एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। आज की
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले

0: है न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं चिंतन

जीवात्मा जल की बूंद के समान है और परमपिता परमात्मा सागर के समान। बूंद का सागर में विलीन हो जाना ही बूंद के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है। मोक्ष ही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। जिस मनुष्य को शरीर में रहते हुए मोक्ष का अनुभव हो जाता है, उसी का मानव जन्म सफल होता है। ये अनुभव तभी हो पाता है जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को त्याग कर प्रभु नाम का गुणगान करते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य के जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि हर समय भगवान श्रीहरि की स्मृति बनी रहे।

प्रभु का नाम बहुत प्यारा है। प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम का सुमिरन करने से मन के विकार दूर होते हैं और प्रभु तक पहुंचने का मार्ग सरल हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 138।

बड़ी चतुराई से मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:30 पर। सुबह 9:00 सुनिएगा स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय रहेगा मानसून में बच्चों की सेहत का कैसे रखें ध्यान। विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद से विषय संबंधी प्रश्न पूछने हेतु स्टूडियोज का दूरभाष नंबर रहेगा 01892224391। गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:00। 10:30 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का, कार्यक्रम होगा पहाड़ों के सुर। 11:30 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम तराने मन के। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12:00। 12:30 पर नन्हे श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। वीकली पल्स, ये विषय रहेगा आज के युवा मंच कार्यक्रम का, सुनना ना भूलिएगा शाम 5:30 पर। शाम गजल, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6:05 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे महिला साथियों के लिए सजीव फन इन फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम मिंजरा। खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:10 पर। 8:00 सुनिएगा विविध संगीत, कार्यक्रम होगा सबरस। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा विख्यात निर्माता निर्देशक चेतन आनंद पर। 9:20 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे।

आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रविवासरीय संगीत सभा रात 10:00।

7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ एट 9।

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिली किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य प्रभृति अस्य मासस्य

0: दिनांकं यावत् कतार बहरीन कुवैत ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमंत्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमंत्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय संबंधानां दृढ़ीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई

इस संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे, हमेशा की तरह खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और रिम झिम बरसात का मजा ले रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या बात होती है जब आपका साथ होता है, हमारा साथ होता है और साथ में होती है गर्म गर्म चाय की प्याली। शायद इसी को जीना कहते हैं। आज के सुबह सुहानी कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक सुविचार के साथ। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। ये विचार स्वामी विवेकानंद के हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है। यदि हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम अपनी और सभी की नजरों में श्रेष्ठ बन जाते हैं। वहीं यदि हम अहंकार या ईर्ष्या के वश में किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हम अपनी नजरों में तो गिर ही जाते हैं, समाज में भी सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते और हमारी छवि भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़िए। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप क्या हैं। और दोस्तों, आपको मालूम है हम क्या सोच रहे हैं? चलिए आपको बता देते हैं। हम सोच रहे हैं आपका मनोरंजन किया जाए और आपको सुनवाया जाए एक प्यारा सा गीत। तो पेश है आप सभी के लिए ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, हमारे दिल में क्या होता है हम आपको बता ही देते हैं, बिल्कुल नहीं छुपाते आपसे। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज क्या क्या घटित हुआ। आज विशेष के अंतर्गत 1994 की बात करते हैं। इजराइल अधिकृत जेरिको में फिलिस्तीनी स्वशासन की औपचारिक शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन 1998 में पीट संप्रास ने पांचवीं बार विंबलडन का एकल खिताब अपने नाम किया। 1999 की हम बात करें तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तालिबान पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 2004 में ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रच दिया था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया था। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1901 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बी एन सरकार का जन्म हुआ था। बी एन सरकार के विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे, पहले आपको बता देते हैं 1920 में प्रसिद्ध भारतीय तैराक सचिन नाग का जन्म आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1931 में दिल्ली हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक शरद बगारे का जन्म हुआ। 1995 में देश की विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1877 में अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवियत्री तोरू दत्त का निधन आज के दिन हुआ था। 1957 की बात करते हैं। आज के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए थे। 1920 में आज के दिन चित्रकला, शिल्पकला और खुदाई कला के जर्मन कलाकार मैक्स क्लिंजर का

निधन आज ही के दिन हुआ था। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में एक बार फिर से रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस गीत से पहले हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि इन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए थे, और हमने आपको बताया प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बी एन सरकार का जन्म आज के दिन हुआ था। चलिए ये चलते हैं आपको गुजरे जमाने में। बीरेंद्र नाथ सरकार, जिन्हें हम बी एन सरकार के नाम से

जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता थे बी एन सरकार का जन्म 5 जुलाई 1901 यानी आज के दिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर में हुआ था। कलकत्ता के हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। भारत लौटने पर उन्हें एक सिनेमाघर बनाने का कार्य सौंपा गया। यहीं से उनके मन में फिल्मों के प्रति आकर्षण विकसित हुआ और उन्होंने बांग्ला भाषा की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कोलकाता में चित्रा नाम के सिनेमाघर का निर्माण कर दिया। इस सिनेमाघर का उद्घाटन 30 दिसंबर 1930 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बाद में न्यू सिनेमा का निर्माण हुआ जिसमें हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी। सिने जगत के आरंभिक दौर में उन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया। दीना पावना जो 1931 में आई, पुनर्जन्म, चंडीदास 1933 में आई, मीराबाई 1935 में आई फिल्म देवदास, 1937 में निर्माण हुआ मुक्ति फिल्म का और 1938 में विद्यापति फिल्म आई। 1941 की बात करें तो नर्तकी फिल्म भी उन्हीं ने बनाई। उनकी यादगार फिल्में यही थीं और इसके अलावा भी और फिल्में थीं जो बांग्ला और हिंदी भाषा में थीं। और इन सभी फिल्मों का निर्माण न्यू थिएटर्स के बैनर तले हुआ था। फिल्म निर्माण में उनके महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में बी एन सरकार को भारतीय फिल्म क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1972 में उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1980 को कोलकाता में उनका निधन हो गया।

कानन देवी का गाया विद्यापति फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। ये फिल्म 1938 में आई थी। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और दोस्तों मनोरंजन का ये सिलसिला जारी है। सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, जीवन चलने का नाम है और बहुत से लोग रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चलकर पीछे रह जाते हैं। लेकिन सफर का मजा तभी है जब हम सभी को साथ लेकर चलें। कार्यक्रम में बातें करते हैं आज की खबरों के बारे में। उपरोजगार कार्यालय नूरपुर में सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपरवाइजर

पदों हेतु 8 जुलाई को होंगे साक्षात्कार। रोजगार कार्यालय नूरपुर के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार एक निजी कंपनी में 150 पदों के लिए ये साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। सभी पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8558 0622252। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए 8558 0622252। इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। हिमाचल के फल अब ओमान में अपनी मिठास बिखेरेंगे। पहली बार हिमाचल से ताजा चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। इससे हिमाचल के फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी, साथ ही हिमाचल के बागवानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी दाखिले हेतु 15 जुलाई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र मोहली धर्मशाला के निदेशक श्री कुलदीप कुमार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु आवेदन 15 जुलाई शाम 5 बजे तक क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र मोहली धर्मशाला कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। दोस्तों, देश के कई राज्यों के साथ साथ धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में आजकल रह रहकर झमाझम बरसात हो रही है, जिसके कारण धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों का मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले लगभग 7 दिनों तक वर्षा का ये क्रम रुक रुक कर जारी रहेगा। ऐसे में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि वह नदी नालों से थोड़ा दूर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग। आज के शुभ प्याग कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लीजिए सुनिए पवन डोगरा का गाया ये लोकगीत।

104 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया,

0: सौ साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
3: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से

0: चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक

0: India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आगाज कर रहे हैं जसपाल सिंह के गाए सावन को आने दो फिल्म के इस गीत के साथ। संगीत राजकमल का है।

सावन को आने दो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था जसपाल सिंह ने। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गजब फिल्म का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गजब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
6: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
5: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
5: वो कैसे?
6: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
5: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
6: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
5: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
6: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
5: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
6: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
7: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उत्तम जगदीश की बनाई तर्ज पर वारिस फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में। ये गीत हमने

इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम संपन्न होता है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम।

0: नमस्कार श्रोताओं, आरोग्यम कार्यक्रम के इस अंक में मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। बदलते मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे बुजुर्ग और बच्चे। ऐसे में हमें अपने बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है। मानसून में बच्चों का ध्यान कैसे रखें, यही विषय है आज के आरोग्यम कार्यक्रम का। और इस विषय पर जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर देने हेतु हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद। डॉक्टर आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: जी डॉक्टर साहब। मानसून यानी बरसात का मौसम आ चुका है। ऐसे में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में किस प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है।
1: देखिए, मानसून का सीज़न जब आता है तो बच्चों में एक नई उमंग भी भर जाती है, वो बारिश देख के बहुत खुश हो जाते हैं। बट अगर हम एज पेरेंट्स, एज अभिभावक कुछ सावधानियां ना बरतें, कुछ प्रिकॉशंस ना लें, तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले जो आपने आज ये प्रश्न पूछा कि उनमें कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, तो जो मच्छर से फैलने वाले जो बीमारियां हैं
0: जी,
1: जैसे जब बारिशों में घर के आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें इनका जो अंडे जब हो जाते हैं मॉस्किटोज का, ब्रीडिंग प्लेसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली जो बीमारी हम सबको पता है वो है डेंगी। डेंगी जो मच्छर के काटने से फैलती है, और इसके जो लक्षण होते हैं, तेज़ बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने आना जिसको हम लाल लाल चकत्ते बोलते हैं, उल्टी होना, और छोटे बच्चों का सुस्त हो जाना, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना, तो पहले तो ये बीमारी है
0: जी।
1: फिर दूसरी आ गई हमारी मलेरिया। मलेरिया में भी तेज़ बुखार आता है, पसीना आता है, और फिर है हमारी चिकनगुनिया, जिसमें बुखार तो होता ही है पर जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द भी होता है। फिर हम आगे चलते हैं जो कि बीमारी जो फैलती है पानी से, वाटर बॉर्न डिजीज जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारा हेपेटाइटिस ए, पीलिया, टाइफॉइड जिसमें तेज़ बुखार होता है, और बुखार थोड़ा लंबे समय तक चलता है, उल्टियाँ भी हो सकती है और पेट में तेज़ दर्द भी हो सकता है
0: जी।
1: और हमारा फूड पॉइजनिंग, डायरिया, एंड और भी जैसे हमारा बहुत कॉमन होता है वायरल फीवर जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। ये हमारी कुछ बीमारियाँ हैं जो मानसून के सीज़न में बच्चों में हमने देखी है कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बहुत कॉमन जो मानसून के सीज़न में पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं या उनको नहीं पता चलता है, वो है फंगल इन्फेक्शन।
0: जी बिल्कुल,
1: स्किन गीली रहती है, वो वहाँ पे जो फंगल रैशेस होने का खतरा बढ़ जाता है, स्पेशली जो हमारे 2-3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, डायपर रैश होता है, नॉर्मल डायपर रैश भी कई बार फंगल रैश में चेंज हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं, कुछ संक्रमण हैं जिनसे हमें बच्चों का ध्यान रखना है।
0: जी बिल्कुल, और इन सभी संक्रमण या रोगों के बारे में कार्यक्रम में हम आगे चर्चा करेंगे। बता देते हैं आज के कार्यक्रम का विषय श्रोताओं के लिए, मानसून में बच्चों का कैसे रखें ध्यान। विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद। दोस्तों, आप इस विषय पर यदि कोई जानकारी चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391, यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। जी डॉक्टर साहब, सामान्य बुखार से हम बात शुरू करते हैं। सामान्य बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है बरसात के मौसम में, तो इसमें कितना हमें घबराने की ज़रूरत होती है?
1: देखिए, कोई भी जो 3 महीने से जो छोटा बच्चा है, 90 दिन से छोटा बच्चा है, उसमें अगर बुखार आ रहा है 101, 102 डिग्री तक अगर आपका बुखार चला गया है, आपने थर्मामीटर में नापा है, तो आपने इमिडिएटली किसी डॉक्टर को उसको ज़रूर चेक कराना है, क्योंकि इस एज के बच्चों में हम किसी भी बुखार को सामान्य नहीं मानते हैं जब तक वो वैक्सीन के बाद ना आए। क्योंकि जब वैक्सीन लगती है, टीकाकरण होता है बच्चों का 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, तो उसमें बुखार आना एक कॉमन चीज़ है,

0: जो कि पैरासीटामोल देके हम उसको ठीक कर सकते हैं।
1: जी
0: बट अगर ये बच्चे बुखार के साथ सुस्त हो गए हैं, सांस तेज चल रही है, दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, या आप देख रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी, जितना बच्चा खेलता था आपके साथ, इंटरेक्ट करता था, वो अभी उतना नहीं कर रहा है, सुस्त हो गया है या पेशाब भी कम कर रहा है, तो आपने ज़रूर आपने किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर उसको चेक ज़रूर कराना है। अब जो बड़े बच्चे हैं, जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, 2 साल तक के या 5 साल तक के बच्चे हैं, डेंजर साइंस आपने हमेशा ध्यान रखने कि कब आपने बुखार, अगर बच्चे को आ रहा है तो आपने कब डॉक्टर को दिखाना है। उसमें सबसे पहला होता है कि बच्चा अगर खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दे,
1: जी
0: डिहाइड्रेशन हो जाए, पेशाब कम कर रहा है, या फिर सांस तेज़ चल रही है, आपने सारी दवाइयाँ दे दी हैं जो बुखार तोड़ने की होती है, और उसके बाद भी अगर बच्चे को बुखार नहीं टूट रहा है तो आपने ज़रूर डॉक्टर साहब को दिखाना है। आप घर पे क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अगर बुखार आ रहा है तो सबसे पहले आपने बच्चों को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना है,
1: जी
0: कपड़े उसके हल्के कर देने हैं, स्पंजिंग करनी है, स्पंजिंग भी उसको पोंछना है ताकि उसका शरीर का तापमान कम हो जाए, और साथ में उसको जो बुखार की दवाई आपके पास होगी, आपके डॉक्टर साहब ने दोगी, वो आपने ज़रूर उसको देनी है उसके वज़न के अनुसार।
1: जी
0: आपने इस दौरान उसके खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना है, फ्लूड इनटेक अच्छी होनी चाहिए, पानी उसको पिलाते रहें, एक हेल्थी डाइट दें, रेस्ट कराएं, ये सब प्रिकॉशंस लेके आप बच्चों के बुखार अगर आ रहा है तो आप ध्यान रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो संजीव जी, नमस्कार।
1: जी, नमस्कार। प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से, और अपना नाम
2: डॉक्टर
1: भी
2: साहब
1: बता
2: नमस्कार।
1: दीजिए।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि आज थोड़ा आसान ही है। देखिए, आपको पता है कि बच्चे बहुत नटखट होते हैं, बारिश में चाहे उनको जितना भी रोके किसी ना किसी तरह से वो बाहर निकल ही जाते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर बच्चे बाहर निकल गए, बारिश में भीग गए या कीचड़ में सन गए, तो उसके बाद हम अभिभावकों का क्या फर्ज बनता है कि उनको क्या और ट्रीटमेंट किया जाए?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आपकी पहली लाइन ही बहुत ही क्या बोलते हैं, बच्चों के जो उसका व्यवहार है उनको दर्शाती है कि वो बहुत नटखट होते हैं। तो उनको अगर आप मना भी करेंगे बारिश में नहीं जाना है तो वो फिर भी वो जाएंगे। तो एज पेरेंट्स, एज अभिभावक, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, जैसे ही बच्चा बाहर से बारिश में खेल के आ रहा है, भीग के आ रहा है, तो उसके कपड़े आपको इमिडिएटली चेंज करने हैं, क्योंकि भीगे कपड़ों में जब बच्चा ज़्यादा रहता है उसको बुखार, खांसी, जुकाम होने का रिस्क रहता है। दूसरा, जब बच्चे बाहर से कीचड़ में खेल के आएँ, उनके आपके पैरों का ध्यान ज़रूर रखना है, उनको आपने पैर को ज़रूर साफ़ करना है, क्योंकि पैर अगर ज़्यादा गीले रहेंगे, उसमें बच्चे अगर सॉक्स डाले हैं, चप्पल डाली है, जूते भी डाले हैं, तो पैरों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, बाहर से जब खेल के आएँ, आपने उनको अच्छे से ड्राई करना है, और आते ही आपने उसको एक हेल्थी डाइट, पौष्टिक आहार ज़रूर देना है, और पानी का ध्यान भी रखना है। ये कुछ आप कुछ प्रिकॉशंस है, जब बच्चा बाहर से खेल के आ रहा है, बारिश में भीग के आ रहा है, तो आप उस टाइम पे ध्यान रख सकते हैं। और इमिडिएटली जब बाहर से खेल के आए, उसको आप पंखे में या एसी के सामने ना बिठाएं, तो इससे भी बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है।
2: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आगे भी आप बताते रहेंगे कार्यक्रम में 10 बजे तक, तो बहुत
0: बिल्कुल
2: बहुत धन्यवाद
1: जी।
2: बिल्कुल
1: राणा
2: जी
1: जी, अगर
0: बिल्कुल
1: नाम बताना चाहें तो बता सकते
2: जी, मैं बोल रहा हूँ जी,
1: हैं।
2: पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरियां के गांव महतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
1: जी शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, और जुड़े रहिए कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सामान्य बुखार की, और टीकाकरण के बीच में बात आई, तो कई बार भ्रांतियां होती हैं कि बरसात के मौसम में टीका नहीं लगवाना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये आपने जैसे ये भ्रांतियाँ हैं कि किसी भी मौसम में हमें टीका नहीं लगवाना चाहिए या टीका लगवाना चाहिए, बच्चों के जो वैक्सीनेशन जो है उनके एज के अकॉर्डिंग चलता है।
1: जी
0: जो सरकार ने भी और IAP ने भी जो उनका जो टीकाकरण का जो एक शेड्यूल या रोस्टर बना के दिया होता है, वो उनकी एज के अकॉर्डिंगली बनता है। तो एज के अकॉर्डिंग उनका वैक्सीनेशन लगाना उनकी हेल्थ, इनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बारिशें होती हैं तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, हेपेटाइटिस ए, पीलिया,
1: जी
0: टाइफाइड एंड फ्लू, ये खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बारिश से, बारिश होने से पहले, बारिशों में भी आप ये वैक्सीन्स लगवा सकते हैं। पहली है हेपेटाइटिस ए की, दूसरा हमारा इन्फ्लुएंज़ा जो कि हमारा वायरल बुखार होता है, ये बच्चों को जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है या निमोनिया बन जाए उससे प्रिवेंशन देता है, एंड दूसरा है हमारा टाइफाइड। और भी इंपॉर्टेंट टीके हैं जैसे कि खसरे का टीका जो MMR

0: टीका आता है,
1: जी
0: चिकन पॉक्स। मैंने अपनी जब हम हॉस्पिटल में ओपीडी प्रैक्टिस करते हैं तो देखा कि जब बारिश चल रही होती है या बारिशें आती हैं तो चिकन पॉक्स के केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो चिकन पॉक्स का टीका भी आता है, वो भी आप लगवा सकते हैं। एंड एक निमोनिया का टीका भी आता है, तो वो भी आप बच्चों को बारिशों में इन संक्रमण से बचाने के लिए अपने बच्चों को बारिशों में भी लगवाया जा सकता है अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया है, और बारिश होने से पहले भी। तो
1: जी
0: बारिश में ये टीके नहीं लगवाने हैं या लगवाने हैं, ये बिल्कुल भ्रांति हैं। सारे टीके बिल्कुल सेफ़ हैं और आपकी बच्चे की हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: जी और किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही बाकी टीके जो आपने बताए हैं वो लगवाने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी इम्यूनिटी की आपने बात की है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बरसात के दिनों में कुछ क्षीण हो जाती है, भूख भी कम लगने लगती है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
0: देखिए, जब बारिश के दिनों में हमारी बॉडी से जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आसपास आर्द्रता बढ़ जाती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, तो बॉडी से हमारा एक बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है,
1: जी
0: डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हमें कभी पता नहीं चलता। दूसरा यह है कि बच्चों को बैठे बैठे भी कई बार हमें पसीना आता है, तो उससे जब हमारी बॉडी का पानी कम होता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। वो जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बच्चे पानी ज़्यादा मांगते हैं, तो उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे की जो पानी की इनटेक है, जो फ्लूइड इनटेक है, वो ज़रूर दे। दूसरा, उनको ऐसे खाना दे जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे
1: जी
0: फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सूप आप बना के दिए जा सकते हैं। और जो बाहर के खाने हैं, जो बाहर का खुला हुआ खाना होता है, रोड साइड जो चीज़ें होती हैं, उनको आपको उस टाइम पर अवॉइड करना है। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, मैं हर पेरेंट्स से डिस्कस या रिक्वेस्ट करूँगा कि बारिशों में नहीं, वैसे भी बच्चों को बॉइल्ड पानी या फिल्टर पानी पिलाएं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चों को जब बॉयल वाटर या फिल्टर पानी नहीं मिलता है, डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, वॉमिटिंग के केसेस होते हैं, दूसरा हमारे पीलिया, हेपेटाइटिस है, और टाइफाइड का खतरा तो हमेशा बना ही
1: जी
0: रहता
1: ये
0: है।
1: सभी रोग जो हैं वो जल जनित रोग इनको हम
0: बिल्कुल
1: कह सकते हैं। एक श्रोता कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: जी सर, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, घर में बच्चे हैं आपके?
2: हाँ बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं।
1: जी तो बरसात के दिनों में बच्चों का कैसे हम ख्याल रखें, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत आनंद हमारे साथ हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।
2: जी प्रश्न तो यही है भैया, बच्चे अक्सर शरारती होते हैं और बारिश बारिश होता है तो कपड़े वगैरह को भिगाते रहते हैं, तो उसी में किस तरह से कपड़े पहनाएं और किस तरह से ध्यान रखें, इन्हीं चीज़ों को बताएं। और स्कूल भी ले जाते हैं तो उस समय भी भीगने की मतलब वो रहता है।
1: जी
2: जी
1: जी डॉक्टर साहब क्या कहना
0: नमस्कार
1: चाहेंगे?
0: योगेश जी। तो पहला, जैसे आपने पूछा कि बारिश में जब अगर कोई बच्चा भीग जाता है तो हमें क्या करना है, अभी पहले जैसे मैंने पहले भी श्रोता को बताया कि जब बच्चा बाहर से भीग के आ रहा है तो इमिडिएटली आते ही आपने उसके पहले तो उसको ड्राई करना है, उसको सुखाना है साफ़ कपड़े से, और उसके कपड़े चेंज कर देने। कपड़े चेंज करने के बाद आपने उसको सीधा पंखे में या एसी में नहीं रखना है, और जब बाहर से खेल के आ रहे हैं, जब कीचड़ भी होता है बाहर, कीचड़ पैरों में लग जाता है, पैर भी गीले हो जाते हैं, तो आपने उनको साफ़ पानी से धोना है और उनको फिर ड्राई करना है, क्योंकि वही फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है और बारिशों में त्वचा संबंधी रोग भी बहुत बढ़ते हैं, तो आपने इसलिए हमेशा ड्राई करके उनको साफ़ कपड़े पहनाने। रही बात कपड़े कैसे डालें, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े ना डालें, और ज़्यादा उनको ओवर क्लॉथिंग ना करें, ज़्यादा लेयर्स ना डालें, क्योंकि बारिशों के सीज़न में पसीना आता है, और पसीना जब अंदर रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन होना, त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमेशा उनको एक सॉफ्ट कपड़े हमेशा डालें, ज़्यादा उनको ढकना नहीं है ना, और उनकी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पानी की जो उनकी पूरी की इनटेक है वो अपने ध्यान देना है, बाहर का जो स्ट्रीट फूड होता है वो अवॉइड करना है, वो नहीं देना है, और अपने डॉक्टर से परामर्श करके रेगुलर जो उनका टीकाकरण है वो करवाते रहना है।
2: जी जी
1: जी योगेश जी, और कुछ पूछना चाहेंगे?
2: नहीं धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने त्वचा संबंधी रोगों के बारे में बताया, फंगल इन्फेक्शन अक्सर बच्चों को हो जाता है, इसके अलावा फोड़े फुंसियाँ भी निकल आते हैं, कई बार डायपर रैशेज़ हो जाते हैं छोटे बच्चों को, तो ऐसे में अभी आपने बताया कि गीला नहीं रखना है, लेकिन जब ये रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: वही कि सब जब अब फंगल रैश से प्रिवेंशन का सबसे पहले हमारा है कि उस एरिया को हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है,
1: जी
0: ड्राई ज़रूर करना है, और उसका तो एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है कि जितना हो सके

0: बच्चे को डायपर का यूज़ अवॉइड करें,
1: जी
0: स्पेशली रात में। होता क्या है कि जब पेरेंट एक बार रात में डायपर लगा देते हैं, जो हमारे 6 महीने या 1 साल से छोटे बच्चे
1: जी बिल्कुल, और उसके बाद निश्चिंत होकर के
0: सो
1: सो
0: जाते
1: जाते
0: हैं
1: हो।
0: और उनको लगता है कि डायपर अपना काम करता रहेगा,
1: जी,
0: बट यही हमसे एक गलती हो जाती है, क्योंकि डायपर को अगर गीला नहीं भी हो रहा है तो हर 2-3 घंटे में आपको चेंज करना ही है, क्योंकि डायपर आप लगाएंगे तो वहाँ मॉइस्चर रुकेगा रुकेगा, वहाँ
1: जी
0: जो गीलापन रहेगा, और जितना वो एरिया वो गीलापन रहेगा वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और रैश होना, फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा,
1: बढ़
0: स्पेशली
1: जाता है
0: बारिशों के सीज़न में।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: यह
1: शायद यही कारण है कि पुराने समय में सूती कपड़े से बने
0: बिल्कुल
1: लंगोट जो है वो बच्चों को
0: लंगोट,
1: पहनाए जाते
0: वो
1: थे।
0: आज भी हम पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि जितना हो सके हम जो कॉटन के जो लंगोट आती है या कॉटन नैपीस जिसको बोलते हैं
1: जी
0: उसको आप यूज़ करें, और डायपर का यूज़ कम से कम करें, और अगर आप यूज़ भी करना चाह रहे हैं तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि डायपर का यूज़ कैसे करना है, कि रात में अगर आपने लगाया है, अगर बच्चे ने गीला फिर भी नहीं करा है तो फिर भी आपको 2 से 3 घंटे में उसको चेंज करना ही करना है, और जब भी बच्चा जैसे गीला हो गया, उसने सुसु या पॉटी करी, तो आपने उसको साफ़ कपड़े से उसको पैट ड्राई करना है, रगड़ना नहीं है,
1: जी जी
0: रगड़ना नहीं है, उसको सॉफ्ट से ड्राई करके
1: जी
0: जब वो सूख जाए एक हल्की कॉटन कोकोनट ऑयल नारियल तेल की एक लेयर लगा के थोड़ी देर उसको एब्जॉर्ब होने दें, फिर आप जो कॉटन नैपी लगाना चाहते हैं या डायपर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, बट थोड़ी देर उसको आपने खुला भी रखना है ताकि
1: जी
0: हवा लगे और वो ड्राई हो जाए, और वो हवा भी वहाँ पे न्यूट्रिशन देती है।
1: कहने का आपका अर्थ ये है कि एकदम से डाइपर चेंज नहीं
0: बंद
1: करना है, थोड़ी देर उसको हवा लगवानी
0: लगना
1: है।
0: है, बिल्कुल बिल्कुल
1: और बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं वो पाउडर का भी प्रयोग कर लेती
0: बिल्कुल
1: हैं बीच में, तो ये
0: बिल्कुल।
1: कितना ज़रूरी है।
0: पाउडर का यूज़ तो बिल्कुल भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि पाउडर भी हमने देखा है डायपर रैश, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जीज, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाता है,
1: जी
0: स्पेशली ये मॉनसून के सीज़न में।
1: डॉक्टर साहब, इस संबंध में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा आयोजित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अधिकारियों को गति लाने के दिए निर्देश। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ीं और किन्नौर जिला में सहारा योजना असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान कर रही संबल। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद राज्य में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल देर सायं कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में पूर्ण दक्षता व लगन से कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान खेती छोड़ चुके थे वे भी अब दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं और प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए, मक्की की 50 रुपए तथा कच्ची हल्दी की 150 रुपए प्रति किलोग्राम और पांगी घाटी के जौ की 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के बाद प्रदेश में दूध उत्पादन तथा सहकारी डेयरी प्रणाली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने गाय के दूध का MSP 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का MSP 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के अलावा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ा भंगाल क्षेत्र में उगाई जाने वाली राजमा के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं गोदावरी वर्मा।
0: केंद्र सरकार ने मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। सेब सहित स्टोन फ्रूट की पैदावार कम होने से बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। बागवानों का कहना है कि मौसम की बेरुखी के चलते फसल बेहद कम हुई है, दवाइयां और उपकरण महंगे हो गए हैं, खर्चा ज्यादा और आय ना के बराबर रह गई है। इस बार सेब का उत्पादन 6,99,000 मीट्रिक टन से घटकर करीब 4,36,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
2: फल राज्य होने के साथ साथ इसमें 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है और इसमें लगभग 4.5 लाख किसान इसके अंतर्गत काम करते हैं जिनका जो इस बागवानी से जुड़े हैं। तो इस बारी जो एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन है एप्पल के अंतर्गत तो वो इस बारी थोड़ा लास्ट ईयर से कम रहेगी, जो जिसका अनुमान लगभग 4,36,000 मीट्रिक टन के आसपास विभाग ने लगाया है। जो प्रोडक्शन

0: में कमी आ रही है, तो थोड़ा सा जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो लोगों से यही सलाह हमारी विभाग की भी रहेगी कि थोड़ा सा जो विभाग द्वारा जो भी वैरायटीज़ और जो हम बताते हैं, तो उसकी तरफ लोग अपना हाई डेंसिटी की तरफ भी जाएं।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन 100 नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण, नवाचार व उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑनलाइन 100 नामांकन पोर्टल 15 जून से खुल चुका है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की eKYC प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा योजना के लिए पात्र हैं, तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ है, जबकि लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। धर्मशाला में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 व 7 जुलाई को राज्य में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 व 9 जुलाई को राज्य में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चंद्रभागा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जोबरंग पुल पर आवाजाही को लेकर सार्वजनिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने जोबरंग पंचायत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि यदि पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो या नदी का जलस्तर अधिक हो, तो किसी भी परिस्थिति में पुल पार करने का प्रयास न करें। चिकित्सा, आपातकाल या अन्य जरूरी परिस्थितियों में लोग पंचायत प्रतिनिधियों या जिला आपदा संचालन केंद्र से संपर्क व सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक जोखिम ना उठाएं और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में इसी माह मंत्रिमंडल विस्तार संभव, फेरबदल भी होगा। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, हाईकमान की अनुमति के बाद भरा जाएगा मंत्री पद। दैनिक जागरण उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, कृत्रिम ब्रेक देकर नहीं रोक सकते नियमितीकरण, हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हक में सुनाया फैसला। दैनिक भास्कर लिखता है, लोअर मिडल बेल्ट में कम फसल के बीच 15 से सेब सीजन शुरू होगा, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, 1,31,00,000 पेटियां घटने का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा आयोजित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या, मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अधिकारियों को गति लाने के दिए निर्देश। बारिश और

0: ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ीं और किन्नौर जिला में सहारा योजना असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान कर रही संबल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आरोग्यम कार्यक्रम में आज जो विषय हमने लिया है वो है मानसून में बच्चों का ध्यान कैसे रखें। डॉक्टर पुनीत आनंद, वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर है 01892224391। ये नंबर डायल कर आप डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों के संबंध में, कैसे रखें मानसून में बच्चों का ध्यान। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ की यहाँ पर बात जब आती है तो कितनी उम्र तक के जो हमारे युवा हैं या बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कि हम मान सकते हैं कि उनको बच्चों वाले डॉक्टर यानी पेडिट्रिशियंस को दिखाना चाहिए?
2: देखिए, हमारा जो काम है, हमारा जो पेशेंट प्रोफाइल है, वो शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के बाद से, एंड वो कंटिन्यू करता है 18 या 18 साल से कम तक के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो एडोलेसेंट्स, जो एज ग्रुप के जो हमारे बच्चे हैं उनको हम देखते हैं, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो एक पीडियाट्रिशियन ही समझ सकता है
1: जी।
2: तो उसको समझने के लिए जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे कोर्स में होता है, वो हमें उनको हमें अच्छे से समझाया जाता है कि कुछ कुछ जो उनके डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, कुछ जो बिहेवियर के जो उनके जो चेंज होता है, उनके जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं उनको आपको कैसे उनको समझाना है, उनको पेरेंट्स को कैसे समझाना है। एक वो जो बाल रोग विशेषज्ञ है, जो पीडियाट्रिशियन है, वो ही एक अच्छे से समझता है और उनको समझा सकता है
1: जी।
2: तो न्यूबॉर्न, जब बच्चा पैदा हुआ है और 18 साल से कम के जो युवा हैं, वो पीडियाट्रिशियन ही देखता है और उनकी समस्याएं समझ सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो बरसात के मौसम में नवजात शिशु का ख्याल रखने की खास आवश्यकता होती है,
2: बिल्कुल।
1: तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जब एक नवजात शिशु घर में आता है तो खुशियाँ लेके आता है, है ना, हर जगह हर्ष उल्लास होता है
1: जी।
2: बट कई बार हमें सावधानियाँ तो हर बच्चे के साथ लेनी है। तो जब नवजात शिशु आया है और स्पेशली मानसून के सीज़न में, तो एक तो हमें हमेशा यही याद रखना है कि माँ का दूध ही पिलाना है उनको। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग। 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक हमें उनको मदर फीडिंग ही कराना है। कोई डब्बे का दूध, कोई काउ मिल्क, कोई भी एनिमल मिल्क उनको नहीं देना है। दूसरा, अपने हाइजीन का बहुत ध्यान देना है। जब भी आपने उनका डाइपर चेंज करना है या बच्चे ने सुसु पॉटी कर दिया या अगर फीड भी कराना है, हमेशा हाथ धो के या हाथ सैनिटाइज करके ही उनको टच करें, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं
1: जी।
2: दूसरा, उनके आसपास ज़्यादा विजिटर्स अलाउ नहीं करने। घर में जब बच्चा आता है तो बहुत सारे लोग उन बच्चे को देखने आते हैं, बट जब बहुत सारे लोग आते हैं तो साथ में वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु भी लेके आते हैं, और पहले 40 दिन या 1.5-2 महीने में उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसमें जैसे आपने प्रोग्राम के पहले बोला था कि नवजात जो बच्चे होते हैं या ओल्ड एज, उनको इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है
1: जी।
2: जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा कीटाणु घर में आएंगे और उतना इन्फेक्शन होने का बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़
1: ज़्यादा रहेगा। और बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कोई शहद उसको चटाया जाता है या कोई और अन्य चीज़, तो इसमें कितना सत्य है?
2: ये इस पर भी मैं अभी आ रहा हूँ कि पहले 1 साल तक हमें बच्चे को शहद तो बिल्कुल नहीं चटाना चाहिए, क्योंकि हनी के अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म
1: जी,
2: वो जब बच्चे के पेट में जाता है तो बहुत गंभीर बीमारियाँ कर सकता है, जिसमें बच्चों को उल्टियाँ, डायरिया, और ये बहुत गंभीर बीमारी है, बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। तो पहले 1 साल के अंदर बच्चे को शहद तो बिल्कुल नहीं देना है
1: जी।
2: तो न पैदा होती, कई बार होता है कि शहद चटाने से उनकी ज़ुबान मीठी हो, ये भ्रांतियाँ
1: जी,
2: बट ये बच्चे की स्वास्थ्य के लिए
1: हानिकारक है।
2: तो हमने नहीं देना है। और पहले 6 मंथ्स, जो 6 महीने के अंदर, तो बच्चे को पानी भी नहीं देना है
1: जी,
2: क्योंकि जो मदर फीड होता है, जो माँ का दूध होता है, उसमें पानी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो पहले 6 महीने तक खाली बच्चे को माँ का दूध ही देना है और कुछ नहीं देना है
1: जी। ब्रेस्ट फीडिंग की आप बात कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, बच्चों को तो कई बार किसी तरह का रोग सता ही सकता है, लेकिन कई बार बड़े भी कुछ रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन।

0: है या किसी अन्य तरह की मेडिकेशन दवाइयाँ उनको चली होती हैं, तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना सुरक्षित होता है?
1: बिल्कुल, अगर मदर को अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि फ्लू का इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम लगा हुआ है, तो ये देखा गया है कि मदर की बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं,
0: जी
1: जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं मदर की बॉडी में, वो मदर फीड से, माँ के दूध से बच्चों को मिल जाती हैं।
0: जी
1: ये बहुत एक अच्छा नेचर ने एक अपना उनका नियम बनाया हुआ है कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो जो एंटीबॉडीज़ जो बनेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो माँ की उस टाइम पे बढ़ जाती है, वही मदर फीड से बच्चों को ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग
0: जी
1: मिल
0: तो वो
1: जाती
0: बच्चा आने वाले इस तरह के रोगों से लड़ने के लिए उसका शरीर जो है वो
1: है,
0: तैयार हो
1: तैयार
0: जाता
1: रहता है।
0: है।
1: हाँ, मदर को उस टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस लेने हो सकते हैं, जैसे कि मास्क डाल लिया, हैंड, जैसे मैंने बताया, थोड़ा हैंड हाइजीन का यूज़ करें,
0: जी
1: तो उससे मदर को हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बट ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अगर मदर बीमार है तो ब्रेस्ट फीडिंग रोक दी जाए। हाँ,
0: जी
1: अगर मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, या उनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत लग रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करनी है या नहीं करनी है वो आप अपने एक चिकित्सक से परामर्श करके वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पर
0: जी
1: जो हल्के माइनर जो रोग हैं, जैसे कि हल्का बुखार आ गया या खांसी हो रही है, उसमें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: जी, सुन पा रहे हैं हमें?
2: नमस्कार जी, मैं अनुपम बोल रहा हूँ कांगड़ा से।
0: जी अनुपम जी,
2: जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन लगती है, तो जो हमने 2 साल जो उसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी उसमें निमोनिया की वैक्सीन लगा दी है, क्या ये बरसात आने से पहले निमोनिया का वैक्सीन जो वो हर साल लगाया जा सकता है? अगर हाँ, लगाया जा सकता है क्या?
1: जी
2: के कोई कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं?
1: अनुपम जी, जो आप निमोनिया का जो पूछ रहे हैं वो एक हमारा अलग होता है वैक्सीन, जो हम बच्चे को पहले 1.5 ढाई 3.5 महीने पे, और दूसरा वो फिर 15 से 18 महीने पे लगता है। जो एक जो आप हर साल लगवाने की जो आप पूछ रहे हैं वो होता है फ्लू का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, जो एनुअल लगता है, और वो आजकल जो हमारी नई रिकमेंडेशन है वो आप 8 से 10 साल तक बच्चों को लगवाया जा सकता है एनुअल, हर साल।
2: धन्यवाद।
0: जी अनुपम जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है अनुपम जी ने, और कई बार हमें ये नहीं मालूम होता कि ये जो वैक्सीनेशन है ये कितनी बार लगवाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, नाम बताइए।
3: जमन वासी बोल रहा हूँ सर, हमारे भी डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: प्रश्न पूछिए अपना।
3: प्रश्न सर ये है कि मेरे छोटे बच्चे हैं अभी जो 6-7 साल के हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो सर वो अक्सर ना भीग कर ही आते हैं, तो कहीं कहीं इनको कई बार रास्ते में मच्छर, इनका हम हिल एरिया में रहते हैं तो यहाँ उसकी बूंदाबांदी अक्सर की होती रहती है, तो सर वो हमेशा भीग कर ही आते हैं, तो सर उनको कहीं कहीं फुंसियाँ, कहीं दाग हो जाते हैं, छोटे छोटे से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए?
1: देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब भी बच्चा बारिश में भीग के आए तो आते ही आपने उसको पहले तो सुखाना है, साफ़ कपड़े से सुखाना है, और फिर उसके कपड़े चेंज कर देने, क्योंकि बारिश के पानी में कई बार जब बच्चे ज़्यादा भीगे रह जाते हैं या कपड़े उनके ज़्यादा भीगे रहते हैं तो हमारा बुखार, खांसी, जुकाम और त्वचा संबंधी रोग, जैसे कि आपने बताया कि फोड़े, फुंसियाँ होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। और उनको सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद एक आप एक नारियल तेल की एक लेयर लगा सकते हैं, ताकि कई बार बारिशों में हमने देखा कि स्किन जो है थोड़ी रूखी हो जाती है, त्वचा जो होती है रूखी हो जाती है, स्किन से जो उसका जो मॉइस्चर है, उसका पानी है, वो ख़त्म हो जाता है। और अगर जब तक हम उनको एक अच्छा एक नारियल तेल से उनको मॉइस्चराइज ना करें, उनके स्किन पर ना लगाएं, तो ये भी त्वचा संबंधी रोग जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, फोड़े, फुंसियाँ होने का खतरा बढ़ाता है। और बारिश के सीज़न में हम बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनका जो जंक फूड जो होता है, क्योंकि जिसमें उससे भी उनको जो बीमार होने का खतरा पड़ता है, डाइट उनकी अच्छी रखे, पौष्टिक आहार दे, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो बारिश के मौसम में जो फल आए, सब्जियां आए, उनको अच्छे से धो के उनको खिलाएं, और पानी की भी उनको भरपूर मात्रा दें।
0: जी और कुछ पूछना
1: जी
0: चाहेंगे चमन लाल जी?
3: बस, थैंक यू सर।
0: जी शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर आती है कि कई बार बच्चे होते हैं शरारती होते हैं और गिर जाते हैं, सड़क पर गिर जाए, चोट लग गई, और ऐसे में

0: टेटनस का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, तो ये कितना ज़रूरी होता है?
1: बहुत ज़रूरी है। देखिए टेटनस का टीका जो बीमारी का नाम ही वो है, वैक्सीन के नाम में ही बीमारी है टेटनस, एक ये भी एक गंभीर बीमारी है
0: जी
1: और उससे प्रोटेक्शन देता है। तो इसका तो जो हमारे वैक्सीन शेड्यूल में भी इसका टीका लगता है, जो पहले ही शुरू से ही 1.5 2.5 3 महीने से हो जाता है। और ये इतना ज़रूरी टीका है कि मदर को भी लगाया जाता है ताकि प्रोटेक्शन बच्चों को मिले, जो प्रेगनेंसी के दौरान लगाया जाता है।
0: जी
1: दूसरा ये है कि ये हमारा 15 18 महीने, फिर 5 to 6 ईयर्स पे भी, फिर हर 5 साल में हम बच्चों को लगाते हैं, 10 साल में भी ये टीका लगता है।
0: जी
1: इस दौरान अगर बच्चों को चोट भी लगी है और बच्चा ऐसी जगह पे गिरा है जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है या बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके उसको टेटनस का टीका लगवा सकते हैं। बट ये है कि जब भी अगर माइनर चोट लगी है जहाँ पे ज़्यादा खून नहीं निकला है, तो उसमें आप उसमें भी डॉक्टर से परामर्श करके टेटनस के टीके का आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। बट जहाँ जैसे अगर खेलते खेलते बच्चा सड़क पर गिर गया, बहुत कॉमन होता है बच्चा साइकिल चला रहा था और
0: जी
1: सड़क पर
0: जी
1: उसको खरोंच लग गई और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या उसको लोहे से चोट लगी है, जंग लगे लोहे से अगर उसको चोट लगी है, तो टेटनस का टीका
0: जी
1: अनिवार्य
0: वहाँ
1: है।
0: इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता
1: शरीर
0: है।
1: में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है, तो ये
0: जी जी
1: टेटनस का टीका उस टाइम पे अनिवार्य हो जाता है।
0: जी कार्यक्रम चल रहा है आरोग्यम, विषय है मानसून में बच्चों का कैसे रखें ध्यान। कार्यक्रम अभी जारी है, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
3: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
3: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
3: फायदा ही फायदा, परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
3: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 0-1-8-9-2-2-2-4-3-9-1 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हमारे साथ हैं बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद, विषय है मानसून में कैसे रखें अपने बच्चों का ध्यान। इस विषय पर बातचीत चल रही है, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में मच्छर से होने वाले रोगों की हमने बात की थी, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, बहुत से इस तरह के रोग हैं, तो इनमें लक्षण क्या रहते हैं सामान्य तौर पर?
1: देखिए, जितने भी जो मॉस्किटो बॉर्न जो मच्छर से फैलने वाले जो डिजीज़ होते हैं, जो बीमारियाँ होते हैं, उनका सबसे कॉमन जो सिम्टम जो लक्षण होता है वो होता है तेज़ बुखार।
0: जी
1: तेज़ बुखार, चाहे वो आप डेंगू की बात करें, चाहे मलेरिया या चिकनगुनिया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक क्लू हमें मिलता है कि वो आ रहा है बच्चे को तेज़ बुखार। अब अगर हम डेंगू की बात करें, उसमें कुछ उनके स्पेसिफिक जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि कई बार बच्चों को आँखों के पीछे या सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है।
0: जी
1: दूसरा, शरीर पे लाल लाल दाने, चकत्ते जिसको हम बोलते हैं, रैशेस इंग्लिश में, तो वो आ सकते हैं। उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। और दूसरा, अगर ये रोग बिगड़ जाता है तो पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बताता है कि बच्चे को मानसून के सीज़न में डेंगू का बुखार हो सकता है।
0: जी कई बार तो ये जो लक्षण हैं वो सामान्य तौर पर भी देखे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसे में किस तरह से रक्त की जांच होती है?
1: रक्त की जांच होती है, बट कई बार जैसे अब मानसून के सीज़न में अगर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है और स्पेसिफिकली अगर कोई बता रहा है माथे के पीछे जो आई बॉल्स हैं, आंखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है,
0: जी जी,
1: और तेज़ बुखार आ रहा है, टूट ही नहीं रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, पेट में दर्द बता रहा है,
0: जी,
1: तो हम एक आप मान के चलिए सस्पिशन रखते हैं कि इस बच्चे को डेंगू बुखार भी हो सकता है।
0: जी
1: फिर अगर हम दूसरे पे चले तो मलेरिया।
0: जी
1: मलेरिया में,
0: मलेरिया में जैसे कपकपी के साथ बुखार आ,
1: बिल्कुल, जिसको हम शिवरिंग के साथ बोलते हैं, तेज़ बुखार आता है, कपकपी लगती है, ठंड लग के बुखार आता है, कुछ केसेस में पसीना भी आता है।
0: जी
1: तो ये भी एक हमारा लक्षण है मलेरिया का बुखार। दूसरा, आजकल जो चिकनगुनिया, कुछ सिटीज़ में कुछ शहरों में चिकनगुनिया भी होता है, जिसमें बुखार, तेज़ बुखार तो आता है,

0: एक बहुत ही कॉमन जो लक्षण है वो है ना, जोड़ों में तेज दर्द। वो
1: जी
0: इतना तेज दर्द होता है कि कई बार तो बच्चे हाथ पैर हिलाना ही बंद कर देते हैं। उसके भी कुछ टेस्ट होते हैं। तो ये तीन बीमारियां हैं, कभी भी आपको लगे कि तेज बुखार है, उल्टी आ रही है, रैशेज हो रहे हैं, तो आपने ज़रूर अपने अपने किसी जो डॉक्टर से उसको परामर्श कर सके। उसके टेस्ट भी होते हैं
1: जी
0: और ज़्यादातर केसेस में आप घर पे इनको ठीक कर सकते हैं। बट अगर लगे कि बच्चे खाना पीना बंद कर दिया है, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बच्चा सुस्त है
1: जी
0: और ये पेशाब कम कर रहा है, तो ये मीन्स है कि हमारा कोई भी बुखार है बिगड़ रहा है और आपने ज़रूर बच्चे को उस टाइम दिखाना है।
1: जी और इसके गंभीर परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये किस कारण होता है?
0: ये भी हमारा जो ये भी बहुत कॉमन जो होता है डेंगू बुखार में देखा जाता है कि जो हमारे धीरे धीरे करके अगर बुखार ठीक से ना हो या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, ये कई बार हम ऐसे बुखार तोड़ने की दवाइयाँ यूज़ करते हैं जैसे कि एस्पिरिन या ब्रूफिन, जब हम बच्चों को देते हैं बुखार तोड़ने के लिए,
1: जी।
0: उस टाइम पे ये प्लेटलेट्स को तोड़ने लग जाती हैं और धीरे धीरे के बच्चे पे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और उनमें जो खून, कई बार खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं या इवन जो पॉटी होती है उसमें भी खून आ सकता है।
1: जी।
0: तो जब भी बच्चे को बुखार आए तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो सेफ़ दवाइयाँ हैं जैसे कि पैरासीटामोल एक सेफ़ दवाई है, वो आप यूज़ करें, स्पेशली मानसून के सीज़न में, क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए बताना बड़ा मुश्किल होगा कि ये नॉर्मल वायरल बुखार है
1: जी
0: या
1: जी
0: डेंगू का बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है,
1: ये रक्त जांच से
0: ये
1: ही
0: पता
1: हमें पता
0: चलता
1: चलता है।
0: है, या कोई अनुभवी चिकित्सक होगा उसको सिम्टम से भी कई बार पता चल जाता है कि ये बच्चा है, इस पेशेंट या बच्चे को डेंगू का बुखार हो सकता है। पर
1: जी
0: उसमें भी हम एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट, ये CBC का टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम प्लेटलेट्स ज़रूर चेक करते हैं। दूसरा, हम डेंगू के भी टेस्ट आते हैं, वो भी हम करा के देखते हैं, या
1: जी
0: मलेरिया, वो भी हम करा के देखते हैं। बट पेरेंट्स से ये एडवाइस है कि घर पे जब भी अगर आप बुखार दें और फर्स्ट एड आप देना चाहते हैं तो सेफ़ दवाई का यूज़ करें, जो आपके डॉक्टर साहब ने बताया हो वही दवाई का यूज़ करें और वेट के अनुसार दवाई दें। कि आपने सोचा कि उस पहले बच्चे को मैंने इतना दिया था, इसको भी इतने से काम आ जाएगा, या बुखार टूट नहीं रहा है तो मैं 2 घंटे में हम फिर से डोज को रिपीट कर देते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे कई बार दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं।
1: जी सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचना चाहिए, बिल्कुल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही हमें दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक यहाँ बात ये आती है कि जब इस तरह का कुछ हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो घरेलू उपचार भी हम करने लग जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बकरी का दूध देने से ये थोड़े बढ़ जाएंगे, या पपीते का कुछ पत्ती का सूप पिलाने से, तो इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब?
0: आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो
1: जी
0: मैं
1: जी
0: भी उसी बात को रिपीट करूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन कैन कॉज मोर हार्म, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता
1: जी जी
0: है। ये इन सब का ज़्यादातर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि हम गाय, ये बकरी का दूध दें या पपीते का दें। कुछ कुछ केसेस में देखा गया कि वो बढ़ता है, बट इनके कोई प्रूवन रिजल्ट नहीं है।
1: जी
0: प्रूवन रिजल्ट तो यही है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है और अगर बच्चा ठीक है और प्लेटलेट्स एक सेफ क्वांटिटी में है, सेफ
1: जी
0: रेंज में है, तो हम बच्चे को फॉलोअप पे रखते हैं, और कहीं पे भी लगा बच्चे को एडमिट करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर साहब उनको एडमिशन की सलाह भी दे सकते हैं कि बच्चा हॉस्पिटल में रख के हम उसको मॉनिटर करेंगे कि बच्चे के बुखार बिगड़े ना,
1: जी जी
0: डेंगू बुखार जिसमें कॉमनली उसमें ही प्लेटलेट्स की कमी होती है तो बिगड़े ना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब प्लेटलेट्स गिरना शुरू होते हैं तो उस टाइम पर बच्चा पानी की जो इनटेक है वो भी कम कर देता है,
1: जी
0: तो उस टाइम पर हम बच्चे को फ्लूइड्स देते हैं जो कि इंजेक्शन के थ्रू, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो IV फ्लूइड्स जाते हैं जो कि हम IV कैनला लगा के ही बच्चे को दिए जाते हैं।
1: जी
0: तो जहाँ भी बच्चे के अगर आपको प्लेटलेट्स गिरने लग गए हैं तो आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर से परामर्श करना है और जो जैसी एडवाइस दे आपने उनको ही फॉलो करना है।
1: जी और डॉक्टर साहब, बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए, जो बड़े बच्चे हैं वो तो अपने आप अपनी रक्षा कर सकते हैं या कुछ इस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि मच्छर उनको ना काटे, लेकिन छोटे बच्चों को किस तरह के कपड़े या वस्त्र किस तरह के पहनाए जाएं कि वो बच जाएं मच्छर के काटने से?
0: मच्छर से बचाने के लिए आपने सबसे पहला जो प्रिवेंशन करना है कि घर के आसपास आपने पानी इकट्ठा नहीं होने देना है,
1: जी
0: ब्रीडिंग प्लेसेस को अवॉइड करना है। दूसरा, जो 6 महीने 1 साल से छोटे बच्चे हैं, हमेशा उनको आपके पूरी बाजू के कपड़े डालने हैं, चाहे वो आप टी शर्ट की बात करें, चाहे आप नीचे पजामा है लोअर की बात
1: और
0: करें,
1: ये कपड़े अगर कॉटन के हों, सूती हों, तो
0: ज़्यादा
1: ज़्यादा
0: बेहतर,
1: अच्छा है।
0: ज़्यादा बेहतर, क्योंकि
1: जी
0: उससे पसीना ज़्यादा आएगा नहीं, बच्चे के अंदर जो स्वेटिंग है वो भी कम होगी और
1: जी
0: जो
1: जी
0: फंगल रैश या जो त्वचा संबंधित
1: अन्य
0: बीमारी
1: रोगों से भी बचा
0: बचा
1: रहेगा।
0: सा रहेगा। और
1: जी
0: दूसरा ये है कि ज़्यादातर आपने घर में जो मच्छर मारने वाली टिक्कियाँ होती हैं
1: जी
0: कोई भी, या कोई आप ऐसे कोई पदार्थ यूज़ करें जिससे मच्छर, वो 1 साल या 6 महीने से छोटा बच्चा उसको अवॉइड करे, क्योंकि वो उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम है
1: जी
0: जो
1: जी
0: रेस्पिरेशन में भी उसको वो हार्म कर सकती है। कई बार देखा गया उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है या एलर्जीज

0: हो सकती हैं, तो आपने वो भी अवॉइड करना है। और छोटा बच्चा है 6 महीने से, तो सबसे जो आसान तरीका है उसको मच्छर से बचाने का है, वो है मॉस्किटो नेट।
1: जी।
0: मॉस्किटो नेट यूज़ करें, बच्चे पे कोई कोई भी ओडोमॉस या जो भी कोई आता है मच्छर से मारने का, उस पर आपने नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो है उसको वो जो स्किन को एब्जॉर्ब करता है और उनके वो नुकसान भी पहुँचा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी लगता है फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और मच्छरों से बचाव की हम यहाँ बात कर रहे थे, और साथ ही बात आई श्वास संबंधी रोगों की। तो डॉक्टर साहब, सांस कई बार बदलते मौसम में वैसे भी बच्चों का खुलता है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो इनहेलर भी यूज़ करते हैं, तो कितना सेफ होता है ये?
0: इनहेलर अगर आपके डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया है और बच्चे को ज़रूरत है, तो कई पेरेंट्स में भ्रांति रहती है कि इनहेलर यूज़ करेंगे तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी और पूरा जीवन उसको इनहेलर ही यूज़ करना पड़ेगा।
1: जी
0: बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चे को ज़रूरत है और आपके डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है और उसको एलर्जी या एस्थमा या दमा का डायग्नोसिस है, तो इनहेलर लेना बहुत ज़्यादा सेफ है।
1: जी हेलो हेलो जी, नाम बताइए, कौन
2: हेलो,
1: साहब बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ।
1: अमर सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं अभी गाँव पे आ गया है, जिला कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
1: जी,
2: जी
1: तो बताइए, आज जो विषय हमने लिया है उस संबंध में डॉक्टर साहब से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे आप?
2: नमस्कार जी, सर जी, डॉक्टर
0: नमस्कार जी,
2: साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: मेरा प्रश्न ये है कि मेरी ना दो तीन है, 9 महीने की, दो
0: ठीक है,
2: तीन जन यानी लड़की की लड़की है,
0: हाँ जी,
2: 9 महीने की है, तो वो दांत निकाल रही है, 4-5 दांत उसने निकाल लिए हैं, तो
0: मुबारक हो।
2: वो लेटरिंग पकड़ी है उसकी, टटियां जिसको कहते हैं।
0: ये
2: हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो ये आप बता रहे हैं कि दांत आ रहा है और उसके जो लैट्रिन जो पॉटी पतली हो रही है, ये भी हमारी एक
2: हाँ
0: बहुत ही
2: जी,
0: कॉमन भ्रांति है कि हमारा ये कॉमन हमें लगता है कि बच्चे के दांत आ रहे हैं, बच्चे को डायरिया हो गया है, दस्त लग गए हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो उसकी जो शरीर है थोड़ा सा जो लार जो होता है ना, लार ज़्यादा बनाना शुरू करता है ताकि उसको दांतों में दर्द ना हो, ताकि दांत उसके स्वस्थ रहे। और वही लार जब बच्चा पेट में जाता है, बच्चे की लार जो पेट में जाती है वो पॉटी में निकलती है, और आपको लगता है कि बच्चे की पॉटी पतली हो रही है ना।
2: डॉक्टर साहब एक और बात है, वो तो उसकी हीट बहुत है, उसको 4-5 बार हम नहाते हैं तो उसके शरीर की हीट भी ज्यादा बढ़ गई है।
0: बच्चे को 4-5 बार दिन में नहला रहे हैं या हफ्ते में
2: हाँ
0: नहला रहे
2: दिन
0: हैं?
2: में, दिन में
0: चार पांच बार नहलाने की जरूरत नहीं
2: हाँ
0: है
2: जी,
0: बच्चे को नहलाने की, क्योंकि ज़्यादा आप नहलाएंगे तो
2: अच्छा
0: बच्चों को एलर्जी और त्वचा संबंधित बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। तो दिन में
2: हाँ
0: अगर
2: जी,
0: जैसे गर्मियों में आप दिन में एक बार नहला सकते हैं, और उसको अच्छे से आप
2: अच्छा
0: मॉइस्चराइज़ करें, कॉटन के कपड़े डालें, तो ये
2: हाँ जी,
0: बार बार नहलाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। और आपको लग रहा है बच्चे का तापमान ज़्यादा है, तो थर्मामीटर से उसका तापमान ज़रूर चेक करें,
1: जी।
0: टेम्परेचर।
2: और एक बात और है डॉक्टर साहब, वो ना डंडियाँ कटती, मतलब काटती है, बड़ा उठाते हैं तो खिंचती है बहुत ज्यादा, काटने लग जाती
0: क्योंकि उसके
2: है।
0: दांत आ रहे हैं इसलिए बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा है, थोड़ा सा इस टाइम पे बच्चों को लाड़ प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर ज़्यादा आपको लगे कि ज़्यादा लार आ रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा है, तो एक बार नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
1: जी शुक्रिया अमर सिंह जी, लगता है आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा। और डॉक्टर साहब, समय बहुत कम बचा है कार्यक्रम में, और बात अभी गंभीर है, हैजा भी हो जाता है कई बार बच्चों को, तो ऐसे में क्या कारण रहते हैं ये रोग होने के, और किस तरह से बचाव किया जाए, जल्दी जल्दी थोड़ा बताएंगे?
0: देखिए, ये जो बीमारी वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं, जहाँ हैज़ा की बात करें, चाहे टाइफॉइड है और हेपेटाइटिस ए पीलिया है,
1: जी
0: सबसे पहले तो ये फैलते हैं पानी से, वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं। तो इसमें हमेशा हमने बच्चों को बॉयल वाटर या फिल्टर वाटर पिलाना है,
1: जी
0: ट्यूबवेल का पानी नहीं पिलाना, बोरिंग का पानी नहीं पिलाना, क्योंकि ये ज़्यादातर जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं इन पानी में होता है, तो पानी को बॉयल करके दें या फिल्टर करके दें।
1: जी
0: दूसरा, आपने बच्चों को एक आदत डालनी है हाथ धोने की, चाहे बच्चा बाहर से खेल के आ रहा है, खाना खाने से पहले और वॉशरूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश की आदत आपने ज़रूर बच्चे को डालनी है। दूसरा, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो आपने इस मौसम में वैसे भी अवॉइड करने हैं, कटे हुए फूड, फ्रूट्स या सैलड कहीं पड़े

0: देखा गया है कि इम्यूनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। 6 8 से 10 घंटे की नींद अपने बच्चों को ज़रूर देनी है।
1: जी, एक गंभीर खतरा रहता है बरसात के बाद स्क्रब टाइफस का, क्योंकि बच्चे कई बार बाहर घास में खेलते हैं, नंगे पांव भी कई बार चलते हैं, तो ऐसे में क्या लक्षण रहते हैं स्क्रब टाइफस के और किस तरह से इसका उपचार किया
0: स्क्रब
1: जाता
0: टाइप
1: है?
0: देखिए, स्क्रब टाइफस का भी एक बहुत ही कॉमन लक्षण है तेज़ बुखार, जो टूटेगा ही नहीं, जो
1: जी
0: नहीं टूटता वो तेज़ बुखार होता है। और जब भी बिगड़ जाता है तो कई बार लिवर किडनीज भी इफेक्ट होने का खतरा रहता है, और वहाँ तक ना पहुँचा जाए। और इसका भी टेस्ट आता है, स्क्रब टाइफस को जाँच करने का भी हमारे पास टेस्ट है। तो जब भी बुखार ऐसे स्थिति में पहुँच जाता है कि जहाँ हमें लग रहा है कि एक टेस्ट कराने चाहिए बच्चे को, और हमारी
1: जी
0: पॉसिबिलिटी रहती है कि हम इसको डेंगू देख रहे हैं, या हमें लग रहा है स्क्रब टाइफस है, मलेरिया है, निमोनिया है, तो
1: जी
0: डॉक्टर के पास पूरे टेस्ट का एक पैनल होता है, वो हम ज़रूर करवाते हैं। और जहाँ आपको लगे बच्चे का बुखार है, बिगड़ने लग गया है, 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, बुखार टूट ही नहीं रहा है, बच्चे ने वही डेंजर साइंस, जो बच्चे ने खाने पीने बंद कर दिए, या
1: जी
0: पेशाब कम करा है, या आपको आँखों में भी पीलिया लग रहा है, बच्चे की आँखें पीली पीली लग रही हैं, शरीर पे लाल लाल दाने या रैशेज लग रहे हैं, तो आपने इमिडिएटली जाके अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर चेक कराना
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर साहब, इतना तो तय है कि बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो पानी से होते हैं, और पानी आपने बताया है कि उबाल करके पीना है। ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही नहीं, किसी भी मौसम में हम पानी उबाल कर पिए तो बहुत से रोगों से हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके अलावा हमारा बरसात के मौसम में बच्चों का खान पान कैसा रहना चाहिए?
0: खान पान देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आजकल एक जो ट्रेंड चल रहा है वो जंक फूड का। बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, कैंडीज़ या चिप्स खाते हैं, जिनमें हम एक सुनते हैं पाम ऑयल होता है, तो ये इसकी आपने जो इनटेक है वो बच्चों को कम करनी है, क्योंकि इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरा, जो बाहर के जो हमारे कटे हुए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपने बनाना है, आप फ्रूट्स ले आइए, वेजिटेबल्स ले आइए, उनको अच्छे से धोइए और काट के बच्चों को सैलड या दे सकते हैं। और बच्चों को घर में बना हुआ खाना फ्रेश खाना खिलाएं, यानी कि
1: जी
0: आपने अभी बना आज बनाया और 2 दिन बाद उसको खिला रहे हैं, ये भी बहुत कॉमन ट्रेंड है।
1: जी जी
0: बच्चों
1: जी
0: को हमेशा आपने
1: बासी खाना नहीं
0: बासी
1: खिलाना
0: खाना
1: है,
0: नहीं
1: ताज़ा
0: देना है,
1: ही देना
0: फ्रेश
1: है।
0: खाना खिलाना है, ताकि
1: जी
0: उससे भी बच्चों को जो हमारे जो वाटर बॉर्न या जो जो भी रोग हैं उनसे हम उनको बचा सकते हैं।
1: जी
0: और जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जो भी बारिश के मौसम में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो आप उनको खिलाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या सावधानियां रखें कि बरसात के मौसम में बच्चे बीमार ही ना पड़े?
0: देखिए सबसे पहले तो वही पानी आपने बॉयल्ड और फिल्टर पानी पिलाना है। दूसरा, मच्छरों से सावधानी बरतनी, क्योंकि बारिश के सीज़न में जो हमारे दो कॉमन डिजीज़ हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़,
1: जी
0: तो घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। शाम के टाइम बच्चों को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम पे मच्छरों की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो शाम के टाइम थोड़ा बच्चों की बाहर की एक्टिविटी कम करें। हमेशा अगर उनको बाहर ले जाना है तो पूरी बाजू के कपड़े डालें, और रात में जब सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट का आप यूज़ कर सकते हैं।
1: जी
0: डाइट अच्छी रखें, स्लीप अच्छी रखें, घर में नमी या सीलन को अवॉइड करें, और न्यूबॉर्न बच्चा है तो घर में ज़्यादा विजिटर्स अवॉइड करें,
1: जी
0: और उनका वैक्सीनेशन सबसे
1: डॉक्टर
0: इम्पोर्टेंट।
1: साहब, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: श्रोता से यही कहूँगा कि हमारे बच्चों को मॉनसून के सीज़न में हेल्थी रखने के लिए उनकी डाइट, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस सब का आपने ही ध्यान रखना है, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें और खुश रहें।
1: जी, बरसात के मौसम में कैसे रखें अपने बच्चों का ध्यान, ये विषय था आज के आरोग्यम कार्यक्रम का। डॉक्टर पुनीत आनंद ने बहुत ही अच्छी जानकारी आज कार्यक्रम में दी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बुलाने के लिए धन्यवाद।
1: अब संजीव को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आरोग्यम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं और स्टूडियो में बिल्कुल हाजिर हो चुकी हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ज्योति, लेकर कार्यक्रम गीतों का कारवां।

सभी श्रोताओं को हमारा स्नेह अभिवादन। कहते हैं श्रोताओं, संगीत वो भाषा है जो शब्दों से परे सीधे दिल को छू लेती है। इस मौसम की पहली फुहार के साथ ये खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट्स पर पहुंचा रहे हैं। गुरु फिल्म से ये गीत हमने लिया है। श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें हैं। गुलजार का लिखा ये गीत, ए आर रहमान का संगीत।

ये गीत आपने सुना मोहम्मद अजीज़ की दिलकश आवाज़ में निगाहें फिल्म से। आनंद बख्शी ने बोल लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत निर्देशन। गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर लम्हे फिल्म से पहुंचा रहे हैं। ईला अरुण, लता मंगेशकर के मिले जुले स्वर, आनंद बख्शी रचित ये गीत, तर्ज शिवहरी की।

ये संगीत है A.R. रहमान का। रोजा फिल्म से ये अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की मदहोश आवाजें हैं।

आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चालबाज फिल्म से ये अगला गीत।

इस गीत में आवाजें हैं अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपने सुना दिल का रिश्ता फिल्म से उदित नारायण की आवाज में नदीम श्रवण ने धुन तैयार की और समीर के बोल। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संदेश कुमार की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र पहाड़ों के सुर। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कश्मीरी राम को इस अगले लोकगीत में।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये अगला लोकगीत करनैल राणा की आवाज़ में।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। आइए अब आगे कार्यक्रम में सुनते हैं अशोक कुमार और साथियों को इस लोकगीत में।

कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आप सुन रहे हैं अशोक कुमार और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आज बस इतना ही। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद राज्य में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल देर सायं कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में पूर्ण दक्षता व लगन से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए, मक्की की 50 रुपए तथा कच्ची हल्दी की 150 रुपए प्रति किलोग्राम और पांगी घाटी के जौ की 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के बाद प्रदेश

0: में दूध उत्पादन तथा सहकारी डेयरी प्रणाली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने गाय के दूध का MSP 32 रूपए से बढ़ाकर 61 रूपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का MSP 47 रूपए से बढ़ाकर 71 रूपए प्रति लीटर कर दिया है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के अलावा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ा भंगाल क्षेत्र में उगाई जाने वाली राजमा के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं गोदावरी वर्मा।
1: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन 100 नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण, नवाचार व उत्कृष्ट शिक्षण कार्य से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान दिया है। ऑनलाइन 100 नामांकन पोर्टल 15 जून से खुल चुका है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे किन्नौर जिला संवाददाता।
2: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की EKYC प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा योजना के लिए पात्र हैं, तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादलों के बीच धूप खिली हुई है। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ है, जबकि लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। धर्मशाला में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 व 7 जुलाई को राज्य में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 व 9 जुलाई को राज्य में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 और 40 सेकंड हुए हैं। अब आपको सुनवाएंगे नॉन स्टॉप फिल्मी गीत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप फिल्मी गीत। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम तराने मन के। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बदलता है, इंसान बदल जाते हैं, मगर गुजरे दौर के नगमे दिलों में ठहर जाते हैं। कुछ ऐसे ही सदाबहार गीतों के नाम है ये कार्यक्रम, जो सीधे आपके दिल को छुएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साल 1974 की फिल्म हाथ की सफाई के इस बेहद खूबसूरत नगमे से। कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाजें और पर्दे पर सिमी गरेवाल और विनोद खन्ना की वो जादुई मुस्कान आज भी आपको भी याद होगी। सुनिए इस गीत को।

सूरज और चंदा फिल्म से ये तराना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने मन के। देखते हैं कि अब अगला नगमा कौन सा आप तक पहुंचा रहे हैं।

जी श्रोताओं, बिल्कुल अनुरोध फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार साहब की मधुर आवाज में। आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत निर्देशन। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म से। लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत है।

पत्थर के सनम। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन। सचमुच साथियों, पुराना दौर वह दौर था जहां शब्दों में जज्बात होते थे और धुन में रूह बसी होती थी। चलिए इस महफिल को और रूमानी बनाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है 1961 की फिल्म हम दोनों से। जयदेव जी का संगीत है, साहिर लुधियानवी के लिखे बोल जो आज भी हर दिलवाले की जुबान पर रहते हैं। अगला तराना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की मखमली आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं।

दिल तो कभी भरता ही नहीं दोस्तों, खासकर जब ऐसे नगमे कानों में रस घोल रहे हों। लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें इस महफिल को यहीं थामना होगा। उम्मीद करते हैं तराने मन के आज के कार्यक्रम का ये सफ़र आपके दिल के बेहद करीब रहा होगा। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने मन के। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम अब आप सुनेंगे सैनिकों के लिए।

ए.आर. रहमान की बनाई तर्ज पर ए.आर. रहमान का ही गाया गीत अभी आपने सुना। ये गीत हमने लिया था स्वदेश फिल्म से। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फिदा फिल्म का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

चाहते हैं आरज़ू है आशिकी भी अब शुरू है आजा मेरे मन के सोनिया। That's right.

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में बरसात फिल्म का गीत अभी आपने सुना। समीर के बोलों को सुरों में ढाला था नदीम श्रवण ने। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये संगीत है हिमेश रेशमिया का। ऐतराज फिल्म की इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

उदित नारायण और उनका एक निकी आवाजों में एतराज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए आंदोलन फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

सैनिक भाइयों आंदोलन फिल्म के सिकित के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा।

0: सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा लेकर। बच्चों, जब अचानक कोई खुशी मिलती है ना, तो सच में दिल ना गार्डन गार्डन हो जाता है। और आज ऐसे ही आपके दिल को भी हम गार्डन गार्डन करेंगे। पता है कैसे? एकदम बहुत ही प्यारी सी खुशी आपको देने जा रही है आपकी रेडियो दीदी प्रवीण। हाँ, आपको हमेशा यही लगता है रेडियो दीदी ना बड़ी सारी बातें करती है, बोलती रहती है, इसलिए आज आपकी ये दीदी थोड़ा कम बोलेगी, क्योंकि आज स्टूडियो में एक और दीदी आपसे रूबरू होंगे। यानी एक और दीदी है जो अब आपके ऊपर अपना ढेर सारा प्यार और दुलार बरसाएगी, क्योंकि दीदी ने जो आपको ढेर सारा प्यार और दुलार दिया था ना, उससे आपने अपना सारा का सारा थैला भर लिया। जब बोर हो गए तो कहा, मम्मा एक और दीदी चाहिए, परवीन दीदी, किसी और दीदी को लाओ ना। लो जी, आपकी बात को हमने सर आंखों पर रखा और एक और दीदी को हम लेकर आए। तो एक और दीदी बिल्कुल स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड है अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए। तो इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। ये वाली दीदी कुछ नहीं कहेगी अब ये वाली दीदी यानी प्रवीण दीदी थोड़ी देर के लिए चुप बैठेगी, क्योंकि अब आपसे जुड़ेगी ज्योति दीदी।
1: प्रवीण धन्यवाद। और जो हमारे नन्हे मुन्हे सिपाही हैं, उनका कार्यक्रम बाल सभा में ज्योति दीदी भी बहुत बहुत स्वागत करती है और बहुत बहुत प्यार आप सब बच्चों को अपना देती है। और जो श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें भी हमारा नमस्कार।
0: जी, हम दोनों दीदियों की तरफ से रेडियो दीदी इस समय बैठे हुए हैं, हम दोनों

0: की तरफ से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार स्नेह और प्यारे बच्चों को ढेर सारा दुलार।
1: तो कान लगाकर बैठ जाइए क्योंकि अगले 30 मिनट सिर्फ आपके लिए हैं, हमारे प्यारे बच्चों के लिए, जिसमें ज्ञान की बातें भी हम करेंगे और ढेर सारी मस्ती भी करेंगे, झूमेंगे कुछ तरानों पर भी जो होंगे फिल्मी, जिसमें आकाशवाणी धर्मशाला देगा हमारा पूरा पूरा साथ।
0: जी हाँ ज्योति, लेकिन एक बात कहूँ आपसे।
1: जी
0: हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो हमारे नटखट और प्यारे प्यारे शरारती बच्चे हैं ना, अब देखो कैसे कान लगाकर सुन रहे हैं। आपने कहा और ये बिल्कुल कान लगाकर बैठ गए। अरे थोड़ा सा पीछे हटो, कान खराब हो गए तो कल को मम्मा से कहेंगे, मम्मा दीदी ने कहा था कान लगाकर सुनना। तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए क्योंकि ज़्यादा आवाज़ भी कानों के लिए अच्छी नहीं होती है। और हाँ ज्योति, एक बात और सुनिए, थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बच्चों को डांटना भी ज़रूरी होता है। आप इतना प्यार करेंगे तो आपको पता है आने वाले टाइम में ये प्रवीण दीदी को बिल्कुल भूल जाएंगे, और मैं ऐसा यानी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने इनको ज्ञान देना है, समझाना है, फिर थोड़ा सा डांटना भी है।
1: जी प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों को प्यार के साथ थोड़ी थोड़ी डांट भी ज़रूरी होती है, लेकिन वह डांट हम तभी लगाएंगे जब हमारे बच्चे कुछ गलत करेंगे। तो आज दीदी सबसे पहले बात करेगी अपने नन्हे दोस्तों के साथ रिमझिम फुहारों के मौसम बरसात के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि बरसात का मौसम किस किस का फेवरेट है? बहुत से बच्चों के हाथ जो है ना वो खड़े दिख रहे हैं प्रवीण। हाँ, क्या कहते हैं आप?
0: बिल्कुल ज्योति, एक इमेजिन करके देखिए आप कि जब किसी भी बच्चे को पूछा जाए ना कि बरसात का मौसम आपको कैसा लगता है, तो सबसे पहले उन्हें याद आता है अपना छाता, प्यारा सा छाता याद आता है, और साथ साथ में बच्चों के कितने खूबसूरत रेनकोट होते हैं
1: जी,
0: है ना,
1: फ्लावर तो, लगते हैं वो, एक फूल लगते हैं
0: जब अपनी पूरी ड्रेसअप होकर आते हैं ना, जब स्कूल जाते हैं और बारिश लगी हो, प्यारा सा छाता जब मम्मा देती है और रेनकोट पहनाकर उनको जब भेजती है ना, तो सच में ऐसे लगता है कि अरे बादल ऊपर क्या कर रहे हो यार, नीचे आ जाओ, आपके साथी तो नीचे घूम रहे हैं बेझिझक और बिना किसी डर के, ये आनंद ले रहे हैं बरसात का। तो ज्योति, बरसात का मौसम सुहावना होता है, अच्छा होता है, मन को खुश करने वाला होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां अपनाने की ज़रूरत होती है, और अगर थोड़ी सी भी भूल चूक होती है ना तो खामियाजा जो है वो बहुत सारा भुगतना पड़ता है। और खासकर जब हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की नाक बहने लगती है ऐसे करके ना, तो मम्मा बड़ा डांटती है। और हाँ, जब हम गंदा गंदा पानी पीते हैं बिना उबाले हुए तो पेट तो खराब होता ही है, तो उसकी भरपाई भी मम्मा और पापा को करनी पड़ती है। तो अब ज्योति दीदी आपको बताएगी कि बरसात के मौसम में आपने कौन कौन सी सावधानियों को चुनना है, अपनाना है।
1: जी, तो बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं और जानते भी हैं कि इस मौसम में मस्ती भी करनी है और कुछ सावधानियों का ध्यान भी रखना है, तभी तो इस बरसात का आनंद आप ले पाएंगे छोटे छोटे हमारे प्यारे बच्चों। जैसे कि बात करें स्वच्छता की, है ना, साफ सफाई का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है ताकि मच्छर उसमें ना पनपे, और खान पान का बच्चों पूरा पूरा ध्यान रखें, बाहर की चटपटी और खुली चीज़ें खाने से आपने बचना है। ये नहीं है कि मम्मा से पैसे आपने मांग लिए और बाहर जाकर कुछ भी चटपटा आप खाते रहें, सिर्फ ताज़ा और घर का बना गर्मा गर्म खाना ही खाएं, वो भी मम्मा के हाथों का बना हुआ। और बीमारियों से अपना बचाव आपने करना है, हाथों को साफ रखेंगे तभी तो आप बीमार नहीं होंगे, है ना। नन्हे सिपाहियों, भीगने के बाद घर आकर तौलिए से शरीर को पोंछ जरूर लें और साफ कपड़े आपने पहनने हैं। और जैसा कि प्रवीण दीदी ने आपको बता ही दिया है कि पानी जो है हमने उबाल कर ही पीना है इस मौसम में, क्योंकि जो पानी इस मौसम में नल से भी आता है ना, वह भी का

काफी मटमैला होता है, दूषित होता है। इसलिए पानी को यदि हम उबाल कर पिएंगे तो वह हमें सेहतमंद ही रखेगा। तो चलिए अब दीदी को ये बताओ कि बारिश का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है, बताओ बताओ जल्दी से। बहुत से ख्याल इस समय हमारे नन्हे साथियों के मन में चल रहे हैं, जिन्हें दीदी बताने की कोशिश करेगी। जैसे कि बारिश में भीगने का बड़ा मज़ा आता है, छाता लेकर घूमने का बड़ा मज़ा आता है, कागज की नाव चलाने का भी अपना मजा होता है, और मम्मा के हाथों के गर्मा गर्म पकौड़े खाने का भी तो भाई स्वाद ही इस मौसम में आ जाता है। साथ ही बहुत से फल इस मौसम में मिलते हैं, जैसे आम है, लीची है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, जामुन है। ये फल जो है ना, वो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और वह खाते हैं। लेकिन इन फलों को आपने धोकर अच्छे से साफ करके ही खाना है। और सबसे बड़ी मस्ती जो है वो बच्चे इस मौसम में पता है क्या करते हैं, वो है दोस्तों के साथ पानी में छप छप करना। भाई कितना मजेदार होता है ये। तो जब आप बरसात का आनंद ले रहे हैं, इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो ध्यान अपना ज़रूर रखें। रास्ते बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं, तो ध्यान से उसमें चलना है और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव ज़रूर करना है। मम्मा को ये आपने भी बता देना है, और मम्मा वैसे भी बहुत स्मार्ट है, वह जानती है, तो वह करेंगे ही इस काम को। पर आप भी ज़रूर याद दिला देना, क्योंकि मम्मा को कितने सारे काम होते हैं ना जो उन्हें एक साथ करने होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मदद आपने भी मम्मा की करते रहना है। और नन्हे सिपाहियों, बारिश का आनंद ऐसे ही हर वर्ष यदि लेना है ना, तो हमें प्रकृति का भी तो भाई ध्यान रखना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, ताकि हमारी जो ये धरती है ना, ये और हरी भरी हो सकें। तो चलिए, बातें तो बहुत सी आपके साथ कर ली, अब हम झूमते हैं इस प्यारे से तराने पर।

0: तो नन्हे दोस्तों, ज्योति दीदी से आपने बड़ी सारी बातें सुनी, बहुत सारी जानकारियां सुनी और उम्मीद करते हैं कि ज्योति दीदी की बातें भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छा, आपको एक सरप्राइज और दे दें, आप भी सोचोगे आज प्रवीण दीदी क्या खाकर आई है। हर बार सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही है। अरे दीदी, छोटी सी क्लास होती है आधे घंटे की, मार डालोगे हमें क्या? अरे आप जियो हजारों साल, ऐसी दीदी की दुआ है हर खुशी आपको मिले और आप स्वस्थ और दीर्घायु बने। वैसे नन्हे दोस्तों, पता है सरप्राइज क्या है? आप ही की तरह एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा बच्चा दीदी की गोदी में बैठा है। अरे दीदी जितना बोल रही है ना, दीदी से कई ज्यादा ये बच्चा बोल रहा है। तो पहले हम इनसे इनका नाम जानते हैं। आपको पता है इस समय आपको बहुत सारे आप ही की तरह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सुन रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: तो नाम बताइए फिर अपना।
1: विभोर।
0: बहुत प्यारा नाम है आपका विभोर। ये बताइए कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हो, आपकी क्लास कौन सी है?
1: एलकेजी।
0: अब आप खुद सोच लीजिए, इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, ये बताओ कि आज क्या खाकर आप आए हो?
1: बैंगन।
0: अच्छा विभोर, ये बताइए कि स्कूल में आपको कौन सी मैडम आपको सबसे अच्छी लगती है?
1: अनुजा मैम।
0: अनुजा मैम, आपके एक फैन को हमने कार्यक्रम बाल सभा के लिए पकड़ के रखा हुआ है और अब आपको आपका ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चा अब सीधा यहाँ से जाएगा रेडियो दीदी के घर। जब आप क्लास में बैठते हैं तो आप शरारत करते हैं वहाँ पर?
1: नहीं।
0: ये बात भी हम मम्मा से पूछेंगे कि विभोर शरारतें करता है कि नहीं करता है। और आपने झूठ बोला ना तो पता है क्या होगा? अरे जो काला कौवा होता है ना, वो काटता है बच्चों को, और जो छोटे छोटे चूहे होते हैं वो भी काटते हैं। और आपको खाने में क्या क्या पसंद है?
1: दलिया।
0: अरे वाह,
1: साबुदाने की खीर।
0: अरे वाह, दीदी के मुंह में पानी आ गया। आपके घर में और कौन है?
1: दादा दादी
0: और
1: मम्मा और माँ दीदी।
0: हाँ, और पापा?
1: पापा शिमला।
0: अच्छा ये बताओ कि आज आप दीदी को और आपके जो दोस्त है ना स्कूल के, उनको क्या सुनाओगे?
1: पोयम।
0: पोयम सुनाओगे? ठीक है, सुनाओ जोर से।
1: अप एंड डाउन, टर्न अराउंड, बी ऑन द फ्लोर, नाउ सिट डाउन। थैंक यू।
0: थैंक यू। हाँ, और क्या सुनाओगे?
1: चंदा मामा।
0: हाँ, जोर से सुनाओ।
1: चंदा मामा गोल मतो कुस्तबोल कुस्तबोल कलते आजे आजे गो खोल बिजो अब अपनी पो रात आते ही तुम्हारे जाते संग साक्षी तारे लाते लेकिन दिन में कांचे पे जाते कुस्तबोल कुस्तबोल। थैंक यू।

0: अच्छा और क्या सुनाना है आपने?
1: तोता तोता तोता पिंजरे में सोता, हाथ नहीं धोता, मुंह नहीं धोता, गंदा बच्चा होता। थैंक यू।
0: थैंक यू। करो क्लैपिंग। बहुत खुशी होती है जब इस तरह के प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे, और खास कर ये जो तोतली जुबान होती है ना, यूं लगता है ना जाने कितना रस, कितनी मिठास इस इनकी जुबान में भरी पड़ी है। और कोशिश हमारी भी यही रहती है कि काश हम भी इनकी तरह छोटे से बच्चे होते तो बस ऐसे ही बोलते और दुनिया जहान की मासूमियत अपनी वाणी में रखते, अपनी बोली में रखते। शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू भीवोर।
2: प्रवीण, एक और नन्हे से कलाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी नाम जान लेते हैं कि इस नन्ही सी परी का क्या नाम है, बताओ।
3: प्रियल।
2: जी बहुत सुंदर नाम है प्रियल। प्रियल कौन सी क्लास में पढ़ती है?
3: LKG।
2: और स्कूल रोज जाते हो? अच्छा, सोच में पड़ गए हो, लगता है मम्मा ही उठा के ले जाते हो और आप नींद में होते हो, है ना। कौन सा विषय आपको पसंद है, जैसे 1, 2, ABC, अनार, क्या सबसे अच्छा लगता है? ये ड्राइंग करना अच्छा लगता है?
3: ड्राइंग।
2: खुद भी बना लेते हो? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चा है ये हमारे पास। और आज हमें क्या सुनाएगा ये हमारा नन्हा सा जो बच्चा है?
3: बादल गरजे गड़ गड़ गड़, बारिश आई छम छम छम, नाचा मोर छम छम छम, भीगे देखो तुम और हम।
2: तो बरसात का मौसम है, बहुत अच्छी पोएम आपने सुनाई। और प्रियल हमें और कौन सी पोएम सुनाएगी? स्टोरी सुनाएंगी, कहानी? सब सुन रहे हैं, और भी नन्हे मुन्ने बच्चे आपको सुन रहे हैं, तो चलिए सुनाइए।
3: एक कौआ प्यासा था, घर में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकट, घड़े में डाले कंकट, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
2: खत्म हो गई कहानी, अरे वाह। और प्रियल मुझे ये बताओ कि खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? आलू। चपाती अच्छी लगती है या परांठा अच्छा लगता है?
3: चपाती।
2: चपाती अच्छी लगती है। और फल कौन सा अच्छा लगता है?
3: ग्रेप।
2: गाना गाती है प्रियल, बहुत अच्छा। सुनाओ के हमें। हाँ जी, तो हम सुनते हैं।
3: दिल्ली से मनाली रात पड़ा ये फसाना, दिल से दिल को मिला।

0: दीवाना लड़का तेरा दीवाना।
1: बहुत सुंदर।
0: एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। बिल्ली मौसी कहाँ कहाँ से आई, वो किसने चूहे खाए उसने दीदी।
1: हाँ जी।
0: कोई गाना सुनाऊ?
1: गाना सुनाओगे तो ठीक है, दीदी सुनेगी। सुनाओ
0: ठीक।

0: बता पर पीछे किए कितने बता हप्पी मीमी चस्का चखा आवा तनु शरारे सिखा जतो लैला लड़ा नवाना नैना च मेरे को नीला समुंदर नाचे मेरे नीला समुंदर समुंदर में डुबकी का आवा तनु शरार सिखावा जतो लैला लड़ा नवाना।
1: वाओ, देखो दीदी तो नाच ही रहे थे जब आप गाना सुना रहे थे, आपने देखा दीदी तो झूम रहे थे, इतना मीठा गाया आपने इस तोतली तोतली आवाज में। तो प्रवीण, इन नन्हे कलाकारों से तो हम मिल लिए और बहुत ही सचमुच आज के बच्चे कितने अद्भुत हैं और बहुत कुछ ये सिखा भी गए और सुना भी गए।
2: जी बिल्कुल। और रेडियो दीदी आपसे खुद पूछना चाहती है ज्योति कि कैसा लगा आपको इन नन्हे बच्चों को, जब हम गोदी में बिठाते हैं ना तो यूँ लगता है कि कुछ समय के लिए हमने इनको कैद करके रखा है इसलिए कि ताकि इनसे हम कुछ पूछ।
3: जी हाँ ज्योति, तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी बाल कलाकार बाल श्रोता इस समय कार्यक्रम बाल सभा को सुन रहे हैं और आपका भी जी थोड़ा सा ललचा रहा है और आपका मन कर रहा है कि चलो भाई जब ये छोटे छोटे तोतली जुबान वाले बच्चे जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि आपके

0: हाँ जी, कार्यक्रम बाल सभा बहुत बहुत स्वागत करता है और दीदी के दिल के दरवाजे हमेशा हमारे बच्चों के लिए खुले हैं। आप जब भी आए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, और जब भी आप आए तो आपने पूरी तैयारी के साथ आना है। आप कोई भी देशभक्ति गीत, कहानी जिसमें नैतिक शिक्षा हो, कोई चुटकुला सुना सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अगर खेलों में कोई नाम कमाया है या किसी दूसरे क्षेत्र में कोई नाम कमाया है तो वो सारे विचार साझा हमारे साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आना होगा आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में और रेडियो दीदी प्रवीण और
1: रेडियो दीदी ज्योति
0: बिल्कुल हमारे छोटे बच्चों की सेवा में तत्पर है। तो बच्चों, आपने भी समय का बिल्कुल फायदा उठाना है और दिल में कोई भी बात नहीं रखनी है। आपको लगता है कि अगर आपको आना है तो ये बात आप अपनी मम्मा के साथ भी बता सकते हैं और आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम प्रमुख के साथ आप संपर्क साध सकते हैं और कार्यक्रम बाल सभा का हिस्सा बन सकते हैं।
1: और चलते चलते अब ऐसा लग रहा है प्रवीण कि झूम लिया जाए, नाच लिया जाए, क्योंकि बातें भी बहुत हो गई, मस्ती भी बहुत हो गई,
0: डांस कर लिया जाए। और ये तो कहने की बात ही नहीं होती। आपको ज्योति ये बता दें हम कि जब रेडियो दीदी बहुत ज़्यादा बोलती है ना तो बच्चे आगे से खुद इशारा कर देते हैं, दीदी थोड़ा विराम दो, अजी ठुमका लगाना है, हमने तो थोड़ा सा नाचना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम गीत संगीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो मूड रिफ्रेश हो जाता है
1: जी। हाँ, तो सुनते हैं ये गीत।

0: गीत का आनंद हमारे बच्चों ने जरूर लिया होगा, नाची भी होंगे, गाई भी होंगे और गुनगुनाई भी होंगे। तो अब जाने से पहले हम अपने सभी नन्हे दोस्तों को बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह
1: और कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, और आज के कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो दीदी
0: प्रवीण के संग
1: और ज्योति के साथ। तो हैं अब आपसे अनुमति।
0: जी हाँ ज्योति, बिल्कुल बच्चों से अनुमति लेते हैं, लेकिन जाने से पहले इन्हीं छोटे छोटे मासूम से बच्चों से एक प्यारा सा छोटा सा वादा। हमेशा की तरह हम चाहते हैं कि आपने हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और हाँ अपनी हंसी से, अपनी खुशी से अपने घर आंगन में ढेर सारी खुशियों को आपने बिखेरते रहना है। और हाँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन हाँ अस्त व्यस्त आपने बिल्कुल भी नहीं रहना है। इन्हीं जानकारियों और बातों के साथ प्यारे बच्चों, जय।

0: अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्हों का कार्यक्रम बाल सभा। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद AI के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान

0: करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to seen. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said, under this act, over 7.5 lakh crore rupees will be invested in 2.86 lakh panchayats in the next 5 years to accelerate the vision of Viksit Bharat. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jayashankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia beginning tomorrow will give impetus to the existing relationship between both the countries and will also open up new areas of cooperation. In an interview to Akashvani in Jakarta today, Mr. Sandeepan Chakravarti, Indian ambassador to Indonesia, said that during Mr. Modi's visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month, there will be several new areas of cooperation that will open up between the two countries. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai passed away early this morning. She had

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है। और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज़ में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका हैं इस फिल्म में बता देंगे, तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नज़र आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वहीं लेकिन हमारी साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात आपने कही। हमारे कौर साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज़ की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह, आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक ज़रूरत पूरी होती तो दूसरी चाह

जन्मे थी। इसी तरह इसी आकाश के नीचे एक कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज़ ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो, ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज़ की तलाश सबसे ज़्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफ़र विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़िंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफ़र जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए थे, लेकिन घर की होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धनपत्नी ने लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट पकड़ा दी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आज सभी आइटम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। भाई बड़ी खतरनाक बात हो गई है। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा जो हुक्म मेरे आका, पर मार्केट सुरीला सफ़र प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर देने हैं, क्योंकि रविवार को होता है ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन। और आप कैसे बताते हैं अपना ये छुट्टी का दिन भी हमें बता सकते हैं आप। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने आंगन में चार पहिया खाट पर आसमान के नीचे तारों को देखकर मीठी नींद में सोने का आनंद खूब लिया है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल ढूंढता है इस गीत के अंतरे में जो जो बातें हुई वो बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी उम्मीदों को बताते हैं। और उनका कमेंट थोड़ा खो गया है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो बातें कुछ इस तरह की हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की उम्मीद, इस तरह की ख्वाहिशें होती ही हैं, उसमें से कुछ तो ज़रूर पूरी हो चुकी होती हैं बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों के लिए बाकी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इस गीत के विषय पर आपने जो पूछा उसकी एक बात वो है, वादियों में खामोशी सुनने की उन्हें चाह है। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी ये चाह जल्दी ही पूरी हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी, इच्छाओं की सूची पहले बहुत लंबी थी, अब थोड़ी छोटी कर ली है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब तलाश समाप्त होती है तो दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आम चीज़ें भी खास लगने लगती हैं, सुबह की धूप, हवा का झोंका या किसी की मुस्कान, हर छोटी चीज़ में एक गहरा रस महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई जब हम अपने जीवन में कुछ अलग तरह से सोचने लगते हैं, नज़रिया बदलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें भी बदलती जाती हैं, हालांकि वो वही होती हैं जो पहले भी हुआ करती थी। तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि हमें अगर जीवन में किसी भी चीज़ की तलाश नहीं है तो कोई एक ऐसा ही गीत हमें मिला है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी आज की लिस्ट क्या थी काम की, रविवार की कोई काम की लिस्ट बनाई थी आपने छुट्टी की, या आपका आपकी छुट्टी सप्ताह के किसी और दिन होती है, ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्ना डे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फार्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का ज़रूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाज़ार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाज़ार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मानसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिज़ायरलेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के ज़माना देखा। तो ये इनका कहना है, साथ ही कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए।

का भाई, सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी ज़रूरतें। कोई अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद यही शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे कौर साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते

वक्त माफ़ी, असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं, कोई कहे तू है ना, टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही हमारे एक और साथी ने। इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बताइए। और हमें ज़रूरत है कि इस गीत को किसने गाया है, ये भी आप हमें बताएं।

आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने कि आज इतवार है फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ, पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठा हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खूब तेज़ बारिश की क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफ़र जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने किस्सा लिख भेजा है कि जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फ़ैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईनी के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयाँ उलझने सामने आती गईं और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज़रूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि प्रकृति इन ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया, फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूँ जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से ज़रूर मिल जाएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूँ। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज़रा ज़रूरी है। ये सच है कि तरक्की ज़रूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जल डमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार।

0: पांच साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व

0: करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने

0: सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार।

अमरीकी अंदाज भी सीखे, हम यारब के राज भी सीखे, अमरीकी

सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ छे, हम हैं राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, हम हैं।

0: राजकुमार, होय होय आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार, हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य से सरकार ने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति और नवाचार कोष को मंजूरी दी है। इससे राज्य में नवाचार आधारित इकोसिस्टम तैयार होगा और हिमाचल प्रदेश देश के नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार 2 वर्ष के बाद इस नीति की व्यापक समीक्षा करेगी और नीति के तहत विकसित प्रोटोटाइप, स्थापित स्टार्टअप, सृजित रोजगार और निवेश जैसे प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा। नवाचार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने वर्ष 2026 से वर्ष 2028 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर गहरा के समीप एक निजी बस पर पत्थर गिरने से इसमें सवार एक यात्री की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों का चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना के समय बस में करीब 40 लोग सवार थे और ये सभी भरमौर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की ईकेवाईसी प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा योजना के लिए पात्र हैं, तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक

0: जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: प्रदेश भर की पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में आज पहली ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया। पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार हुई इन ग्राम सभाओं में स्थानीय मुद्दों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर सहित कुछ अन्य जिलों में हल्की वर्षा हुई है। राज्य के मैदानी इलाकों में इन दिनों उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है भारत की डिजिटल शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना। वाचक स्वर अनुराग पराशर।
1: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा एक खुला मंच है जिससे देश भर के छात्र और शिक्षक अनेक भाषाओं में अच्छी गुणवत्ता वाली पाठ्यक्रम से जुड़ी डिजिटल शिक्षा सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय की PME विद्यांश पहल का एक अहम हिस्सा है जिसका लक्ष्य ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई को जारी रखना है। दीक्षा को विद्यालयी शिक्षा के लिए देश का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इस मंच की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था CIET के सहयोग से चलाया जाता है। दीक्षा को अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है और इसलिए इसे लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न बोर्डों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। किंडर गार्टन से 12वीं कक्षा तक की पूरी डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाता है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा तक सब कुछ शामिल है। दीक्षा का लक्ष्य प्रौद्योगिकी और नवाचार से चलने वाली एक गतिशील शिक्षा प्रणाली बनाना है। ये अलग अलग तरह के सीखने वालों की आवश्यकताओं के लिए आसान, रोचक और व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा देता है। डिजिटल और संवादात्मक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा पारंपरिक कक्षाओं से आगे बढ़ती है। ये छात्रों में ऐसे कौशल विकसित करता है जो अकादमिक सफलताएं, व्यक्तिगत विकास और सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। इस मंच पर मीडिया रीच इंटरैक्टिव संसाधन है। इन संसाधनों में 2D, 3D एनिमेशन, AR अनुभव, सिमुलेशन, वर्चुअल लैब और साइन लैंग्वेज वीडियो शामिल हैं। इन्हें अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ाने और सीखने के अलग अलग तरीकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें QR कोड वाली NZEZ टेस्ट बुक हैं जो कक्षा में आसानी से जुड़ने के लिए NCERT की वास्तविक पुस्तकों को वीडियो संवादात्मक और शिक्षकों के मार्गदर्शन से जोड़ती है। इसमें दिव्यांगों के लिए डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मेट टेक्स्ट टू स्पीच और इंडियन साइन लैंग्वेज ISL वीडियो जैसी समावेशी सुविधाएं हैं। दीक्षा असंख्य अभ्यास प्रश्नों, विस्तृत समाधानों, अनुकूल आकलन और योग्यता आधारित प्रश्न बैंक द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये कमियों की पहचान करता है और समय पर सुधार करने में सहायता करता है। ये निष्ठा और राज्य विशिष्ट TBD मॉड्यूल्स के माध्यम से शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायता करता है और देश भर के शिक्षकों के कौशल को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार सीखने वाला प्रमाणित प्रशिक्षण देता है। ये एकीकृत प्रणाली विषय वस्तु क्यूरेट करने, उपयोग करने और विश्लेषण को एक करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP वर्ष 2020 के अनुरूप समावेशी डेटा आधारित और आनंददायक शिक्षा को बढ़ावा देता है। दीक्षा मंच को विकेंद्रीकृत भागीदारी और विषय वस्तु के कठोर सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रूप समय पर समीक्षा द्वारा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना

0: का योगदान को संभव ये सब बनाता है। ये मंच एक संघ की तरह काम करता है जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी विषय वस्तु अपलोड कर सकता है और स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकता है। प्रतिभागी देश भर से अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु और पाठ्यक्रम अपलोड करते हैं। इस तरह से भाषाएं पाठ्यक्रम के तालमेल और पढ़ाने के तरीकों में बदलाव किया जा सकता है, जिससे देश भर के अलग अलग तरह के सीखने वालों की आवश्यकताएं पूरी होती है। इस मंच पर मौजूद डिजिटल शिक्षा संसाधन संदर्भ के अनुसार सही और लगातार अद्यतन वाले होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
4: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

10 नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाला ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिरी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज़। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन रानी हीरावती?
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गुंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
3: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
4: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
5: भला हम कौन होती हैं
4: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
5: चलो।
1: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
3: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
2: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
1: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है, तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
2: परंतु देवी,
1: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
2: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
1: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़िका, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकुला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया महाराज, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो, कान में सुनिए। हाँ। मैं

0: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
1: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
0: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसिंह को सब समझा दो।
1: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए।
2: जयसिंह इधर आओ।
3: कहिए आज ये गौतम।
2: कान में सुनो।
4: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
0: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
4: आज तो कुछ कम है देव।
5: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
6: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
3: जैसी देव की आज्ञा।
0: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
6: महाराज मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर के सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
4: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
6: अरे काल मुझे दबोच लिया।
0: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
6: मेरा तो अन्नंगा करता जा रहा है, सारे शरीर में विष फैलता जा रहा है।
4: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
5: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
6: महाराज मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाथ मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
0: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
3: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
0: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
3: देव की कैसी आज्ञा।
6: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा की।
4: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
3: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
4: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
3: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए।
1: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? आर्य गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकुला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह,
1: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी,
1: उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
0: क्यों सखी,
1: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास्तु तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
4: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है हमारी।
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकुला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
6: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ, उसे भगाने चल
0: चले।
6: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
7: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांस ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
7: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
7: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
1: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए,

0: आइए हम दोनों उस खंबे की ओट में छिप जाएं। अब यहां से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। ये
1: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
2: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
3: महाराज उधर न जाइए।
4: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
1: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
2: मैं कहाँ है सांप?
3: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
5: महाराज रुकिए।
4: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
2: देवी इरावती,
5: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है?
4: बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
1: ओह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया, पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर के सामने आके रहा।
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
0: देवी
4: क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
5: सखी बकुला वलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
4: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
1: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
4: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
7: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 लाते भी नहीं दी थी कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के फूल ले

0: महाराज अग्नि भी
1: प्रबल वन उत्सव में बला रहे।
2: शुंग कुलभूषण
0: विदिशापति महाराज अग्निमित
1: प्रबल वन उत्सव।

0: जय हो। विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव।
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है।

0: और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
1: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
0: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
2: महाराज की जय हो। विधर्म से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
0: ले आओ।
2: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
3: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
0: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
3: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
0: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
1: मालविका, आगे देवी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
3: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो, राजकुमारी की जय हो।
1: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
0: मालविका राजकुमारी?
3: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी हैं।
0: कैसे?
3: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
1: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
0: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
3: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
0: फिर क्या हुआ?
3: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
4: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
0: भगवती, आप?
3: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
4: हाँ वही है।
3: प्रणाम भगवती।
4: कल्याण हो।
0: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
4: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
0: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
4: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
5: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
6: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
4: भैया, आप भी तो?
6: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
5: श्री, क्या हुआ? क्या सब लोग एक एक रुक क्यों गए?
7: जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
5: वही हुआ ना जिसका भाई था, ठाकुर ने दिया है।
6: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लघु लुहान होकर इधर आ रहे हैं और डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षा

0: वीरसेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
2: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
0: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
2: वो क्या?
0: उसने कहा था, इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही, तो मैं चुप्पी साधे रही। और
3: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ, मंत्रिपरिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
3: जो महाराज की इच्छा।
2: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
3: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज, पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज, महारानी, पुत्र के विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जय सेन।
3: आज्ञा देवी।
2: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
3: देवी की जैसी आज्ञा।
2: मालविका, इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में ये प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे, आप लजा क्यों रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
4: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
5: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम

0: रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम
1: उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफ़ी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफ़ी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए

0: वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूँ मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीयपंथी होने वाला हूँ या तृतीयपंथी की एक्टिंग करने वाला हूँ तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूँ? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची काम कराई तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में, तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी रीलें चलती हैं और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओह यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्म

0: है
1: ये
0: जो
1: वो 80s वाला दौर जो
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई। तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहाँ पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो? तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों? तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट ये। बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को खुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट,
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है, तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट।
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही और उस समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन

0: उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था,
1: ऑफ कोर्स,
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसा जा रहे हो, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
0: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है, अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट। तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज़ टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ,

0: और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत।
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा,
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे, उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो, जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग-अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की।
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी, इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो, और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास, और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते
0: नहीं
1: थे?
0: बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे,
1: सख्त मनाही।
0: इसलिए सख्त मनाई, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे।
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो
1: ओ हो।
0: उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उस

0: का एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती

0: है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन, पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट.
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है, या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था. मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो
0: जी
1: उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजाकिया था.
0: अच्छा
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी.
0: वो
1: ओके,
0: उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे. कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है.
0: फिर
1: ओके,
0: वो जवाब बाद में
1: हाँ,
0: आएगा।
1: वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है. तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था. जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई, और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था. उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था.
0: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल
1: फैमिली
0: रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था, और कॉमेडी. और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ. इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में. चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
0: उनको डायलॉग्स
1: जो
0: भी मजेदार मिलते थे।
1: बहुत मजेदार मिलते थे. और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है आप बुरे होते हो, और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता. कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है. तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने वो किया. वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन।
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
0: हाँ,
1: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं. और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो मुझे
1: काम
0: वो
1: किया,
0: दृश्य याद आ गया
1: बिंदु जी
0: जिसमें
1: के
0: वो
1: साथ
0: सो रहे हैं
1: काम
0: और वो
1: किया.
0: जगाने आती हैं।
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि
0: बिल्कुल
1: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते. जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी. तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी. मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था. फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत. तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: हुकूमत, सड़क,
1: अर्धसत्य
0: है
1: दिखाऊंगी,
0: ना।
1: ये
0: बिल्कुल,
1: सारी फिल्में दिखाऊंगी.
0: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था। वो
1: बहुत ही अलग
0: तो क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार. एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया. मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
0: बिल्कुल,
1: पर वो
0: लेकिन
1: इतनी
0: ये
1: ओवर
0: कुछ
1: द
0: अलग
1: टॉप
0: था।
1: नहीं थी.

0: वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी।
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज। ए!

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकटनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसर, निड़ो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म
0: को मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही

0: में जाते हैं वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं, राइट?
1: बिल्कुल
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे,
1: जी
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप दो प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा रोल है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
1: राइट
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है, तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है, एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया, इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष
1: मिली।
0: मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जय्यू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था,
1: बिल्कुल
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है,
1: जी
0: जो लोग देख पाए उन्होंने ज़रूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल यहां गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं
0: श्योर
1: क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार, वह शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी।

0: उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना पायल देव व सचेत टंडन की आवाज़ों में गाया ये भजन। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना रंगरेज फिल्म से ये शिव भजन, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह साजिद वाजिद ने। भजन फिल्मों से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी फिल्म से ये भजन।

अभी आपने सुना फरहाद शमशुद्दीन व साथियों की आवाज़ों में गाया ये भजन। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अनूप जिलोटा साधना सरगम व साथियों की आवाज़ों में।

इसी के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन आप सुना करते हैं वीकली पल्स।

युवा साथियों, कार्यक्रम में हम आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा साथियों, आप सभी अपने अपने घरों में, अपने कार्यस्थलों पर कुशलता से होंगे, यही हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, हाजिर हुए हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच में, और आज का दिन वीकली पल्स का रहता है, जिसमें जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपको हफ्ते भर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल अपडेट्स देते हैं। जी हाँ युवा साथियों, तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आज हम फिर हाजिर हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और फौरन हाजिर होंगे आपकी सेवा में। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज बात हो रही है वीकली पल्स की, और जैसा कि आपको हमने बताया कि इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र

0: अमेरिका ने अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वतंत्रता की गरिमा और कम्युनिज्म के खिलाफ अपने विचार साझा किए। ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो तेहरान और इराक में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई, जिनके हाल ही में अमेरिका इसराइल के हवाई हमले में मौत हो गई थी, के लिए लाखों लोगों की उपस्थिति में कई दिनों तक चलने वाला राजकीय अंतिम संस्कार शुरू हुआ। यूक्रेन रूस संघर्ष की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अपने चरम पर है। यूक्रेनी वालों ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्रमुख रूसी तेल टर्मिनल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं। कांगो में अगर हम नाव हादसे की बात करें तो कांगो में छात्रों को ले जा रही एक नाव डूबने से कम 20 लोगों की मृत्यु हो गई। जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। पर युवा साथियों, आप कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का हम स्वागत करते हैं और आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोचा। बात करते हैं राष्ट्रीय अपडेट्स की। तो युवा साथियों, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ के सैन्य अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन शामिल हैं। भारत जापान शिखर वार्ता की अगर हम बात करें तो भारत और जापान में नई दिल्ली में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक साझेदारी ढांचे और सैन्य हार्डवेयर के सह विकास हेतु एक रक्षा समझौते की घोषणा की है। सिंधु जल संधि पर सख्त रुख की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि को निलंबित रखा जाएगा। मानसून के प्रकोप की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे सहित उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी पहल की अगर हम बात करें तो जल संरक्षण के लिए पूरे देश में 700 जिलों को कवर करते हुए जल सुरक्षा अभियान 2026 लॉन्च किया गया है।

युवा साथियों, कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा क्रिकेट की अपडेट आपको दे देते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू की अगर बात करें तो 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करके सुर्खियां बटोरी हैं, जिस पर पूर्व क्रिकेटरों ने भी खुशी जताई है। महिला T20 विश्व कप की अगर हम बात करें तो लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की अपडेट्स की, तो भारी बारिश और मौसम अलर्ट की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय है और कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जैसे प्रमुख जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। नदी नालों के उफान पर होने के कारण प्रशासन ने नदी किनारे ना जाने और राफ्टिंग पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी की है। चंबा में भीषण सड़क हादसे की अगर हम बात करें तो चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में उरई सामरा मार्ग पर एक दर्दनाक कार हादसे में 2 महिलाओं और चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलने से पहले ये कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। और हम आपको बता दें कि इस जानकारियों से भरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी दोस्त वर्षा टोश को जाने की अनुमति दें, लेकिन जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले सभी कार्यक्रमों के विस्तृत विवरण का।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शामे गजल। महिलाओं के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। इसमें आप 01892224391 पर फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं से बातचीत का विषय रहेगा जंगलों पर। हम आज बातचीत करेंगे। शाम 7:10 का प्रसारण समय रहेगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी का। रात्रि 8:00 हम आपको सुनवाएंगे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस देशकान। आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम में एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निदेशक चेतन आनंद द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार हुआ। रात्रि 8:15 पर हिमवीर्स कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 8:45 पर समाचार, संध्या 9:00 न्यूज एट 9। रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10:00 रविवार सीरियस संगीत सभा। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस पहली किश्त का उद्देश्य राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाना है ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे।

0: जनसेवा, सुशासन और समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में कुमारसेन क्षेत्र के लिए 8 संपर्क सड़कें स्वीकृत की गई हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि भगवान बुद्ध की करुणा, मध्यम मार्ग और अहिंसा की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ के ताशी जोंग में बोध ज्ञान परंपरा से जुड़े विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में जब पूरा विश्व हिंसा, युद्ध, पर्यावरणीय संकट और नैतिक मूल्यों के क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी के अग्रणी संगठनों व विभागों से अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया है। शिमला में आज कांग्रेस से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठनों व विभागों के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। रजनी पाटिल ने पदाधिकारियों से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने और आपसी तालमेल से कार्य करने पर भी बल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। माकपा ने सरकारी विभागों में की जा रही भर्ती की नीतियों व नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि सरकार जॉब ट्रेनी, मल्टीटास्क वर्कर, पार्ट टाइम, अंशकालिक, ठेका और आउटसोर्स आधार पर काफी कम वेतन या मानदेय पर भर्ती कर रही है, जिसमें भविष्य में रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन नीतियों से युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी बेरोजगारी के कारण गलत कदम उठाने को मजबूर है। सिरमौर जिला भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान आज पांवटा साहब में संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को संगठन की सबसे बड़ी शक्ति बताया और उम्मीद जताई कि ये कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भाजपा की विचारधारा को पहुंचाएंगे। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा वर्ष 2027 के चुनावों को लेकर किए जा रहे दावों को केवल राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा और सोशल मीडिया पर दोषारोपण कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिले जन समर्थन से स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस की कार्यशैली से निराश है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामे गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये गजल मेहंदी हसन की आवाज़ में।

अभी आपने सुनी मेहंदी हसन की आवाज में गाई ये गजल। शामे गजल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गजल।

कार्यक्रम शामे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल। शामी गजल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ये रही जगजीत सिंह की आवाज़ में।

जगजीत सिंह की आवाज में गाए इसी गजल के साथ हमारा आज का शामी गजल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामे गजल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सचिव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा।

कार्यक्रम मिंजरां सुनने वालियां सारियां साड़ियां जेड़ियां बो बो पैना न न्याणे स्याणे न कन्नै साढ़े जेड़े पाऊ पैना न ते ना सारियां ओ तुहाड़ी बड़की बोबो दी तरफ ते प्यार भरी राम राम। तां क्या हाल चाल न तुहाड़े? मैं तां यही भगवान अग्गें प्रार्थना करनी कि तुहां सारियां बोबो पैना जेड़ियां से अपने अपने घरां च सुखी होन समृद्ध होन, है ना जी। तां अज तुहाड़ी बड़की बोबो बड़िया दिनों बाद आई है ये कार्यक्रम ले करी, तां तुहां तौले तौले जुड़ना है, अपने सारे काम तुहां छड़ी देने, कन्नै मेरे ने अज गप्पां चुथणियां, पर गप्पां हां कोई बेलियां नहीं चुथणियां न, गप्पां चुथणियां हां कुसी विशे पर। कन्नै अज मैं तुहाड़े कन्नै गलबात करनी जंगलां पर, यानी कि बण, पहाड़िया च अहें गलांदे ने जेहड़े साढ़े नेड़े तेड़े बन हुंदे, अज अहें तिन्हां पर गप्पां मारनियां, ठीक है। कन्नै मैं तुहाड़े सारियां कन्नै ये प्रार्थना करनी कि मेरे जेहड़े भाऊ हन से अज के इस कार्यक्रम च फोन नहीं करी के साड़ियां बोबो भैणा ओ मौका देन इस पूरे प्रोग्राम च जुड़ने दा। तां साड़ा नंबर मैं एक बारी दसी दी कि 01892224391, इस पर तुहां कॉल करनी कन्नै साढ़े कन्नै जुड़ना, ठीक है जी। तां अज जेहड़ी अहां बोबो भैणा कन्नै गल गप मारनी है से इ'यां है कि क्योंकि तुहानूं पता है, कन्नै जिन्हें नहीं पता है से तिन्हें अज पता लगी जाना कि 1 जुलाई ते लेके 7 जुलाई तक अहां बन

महोत्सव जेड़ा है ना सहमनांदे, यानी कि जंगलों का एक किस्म तुहां रखी लिया कि जन्मदिन टाइप जिया होंदा ना सहमनांदे। तो अज मैं अपनिया बोबो भैणा ते पुछना है कि सह कितनी जानकारी रखदियां ने इहदे बारे च। मैं भी गल्लां चुथणियां ते ना कन्ने कन्ने तिन्हां ते भी मैं पुछनी है कि सह जंगलों वास्ते जेड़ा सह क्या क्या करा दियां। तो आओ मेरी कोई बोबो भैण जिहड़ी है सह जुड़ी चुकी हो। हैलो, अज थोड़ा मौसम जो लेकरी जेड़ा है सै थोड़ा साड़ी मशीनरी जेड़ी है सै थोड़ा साथ नहीं दिया दी है, तो तुहां बुरा नहीं मनाना, कने कोशिश करते रहना। साड़ियाँ बोबो भैन जन मैं तो ये गलांगी जिहड़ियां नी भी जुड़ियां ने कने जिन्हें रेडियो नी ऑन कित्या सै फटाफट रेडियो ऑन करी लैन, कने अपनी बड़की बोबो कने जेड़ा सै जुड़ी जान। हैलो, झटपट गला जी। हेलो, बच्चे कोई बड़ा है घरे च तां तिन्हां कन्नै गल करवा। पाइया ही है भी कार्यक्रम दा टाइम थोड़ा हुंदा तां मजाके च मत लिया करा, फोन करी के बच्चियां दे हत्थें नहीं पकड़ाना, साड़ा भी टाइम जेड़ा सा खराब हुंदा। कने और इतने बारी साड़ियां बोबो भैणा जेड़ियां इस वक्त लाइन च लगियां बेचारियां है ना जी, तां तिन्हां दा भी तुहां टाइम खराब करदे इयां करी के। हैलो, चलो अज मिंजो लगा दा मशीनरी कुछ रुष्ट है साड़े ते, ता अहां तालू तक सुननी ए माता दी पेंट, कैंकि संझा दा बेला है कने शुरुआत अहां जेड़ी असें करनी इस माता दी पेंटा कन्नै।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते जी। जरा फटाफट पहले
1: नमस्ते,
0: अपना नाम दसी दिया,
1: मेरा नाम आराधा देवी है।
0: कुतां ते गला दे तो। हाँ ग्राएं दा नाम भी दसा।
1: जवंडा गिरथोली।
0: अच्छा करथोलिया ते गला दे।
1: हाँ जी,
0: अच्छा जी कदिया लगा प्रोग्राम करने जुड़ी के।
1: बहुत अच्छा लगा रहा मैडम जी।
0: चला ता अज तो अंजो विषय पता है। आज आहां जड़ियां गप्पां चुथणियां ने सह चुथणियां ने जंगलां पर।
1: हाँ
0: ता
1: जी,
0: इस पासे ता तुहाड़े तकर थोलिया कन्ने जंगल बड़े बारी लगदे हैं, है ना जी।
1: जंगल तो बथेरे नु, फुल नु बथेरा, बण बथेरा।
0: हाँ ता ये दिखा ये भी एक किस्म दा हर चीज जेड़ी है साड़ी जिंदगी च ना जरूरी है। ता
1: हाँ जी जी
0: तुहां क्या
1: बिल्कुल।
0: क्या कर दे जंगलाएं बचाने वास्ते। पहले ता इस चीजा पर तुहां गलबात मारा।
1: जंगला बचाने ताई जी लोग अग वगैरह लगांदे, वो ना ये समझांदे कि थोड़ा अग मत लगा कर, पशु पक्षी होंदे ते ना वे भी बच्चे होंदे से अग्गे दे कारण होई जांदे
0: सही गल
1: ते ना,
0: है।
1: पर क्योंकि जिया आन दी जीवन शैली है तिना तिना दी भी है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: यही गलांदे कि पेड़ मत कटा करना और लगाने की कोशिश
0: कने
1: करा।
0: तो हाँ दिखिया होना जालू वहां कोई बड़ा मतलब जियां बोलते ना जियां बच्चे जवान होंदे ते या पेड़ भी जवान होंदे बच्चिया ते, है ना। ता
1: हाँ जी
0: जालू
1: हाँ जी,
0: पेड़ा है वहां कट दे ता तो हाँ आवाज सुनी कदे ही आवाज होंदी जालू टहदा पेड़ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ करी के, है ना जी।
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: सह
1: जी,
0: क्या है, सह भी रोंदा बेचारा,
1: हाँ जी
0: है ना।
1: रोंदा।
0: पर
1: हाँ
0: सीधा
1: जी
0: रोन समझने वास्ते साढ़े वाले दिल चाहिए कि पेड़ जालू वहां कट दे तो सह एक किस्म दा ना पेड़े दा रोना होंदा जिहड़ी कड़कड़ दी आवाज होंदी ना। तो अहां तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही गलाना चाहेंगे कि हूँ जी दिखा ना जालू डिवेलपमेंट होंगी तो जालू मनी लिया रोड बना दे या कुछ भी हो तो कितना नुकसान हुआ दा। तो तिदी भरपाई करने वास्ते सानू सारियां है ना मिली जुली के होर मते सारे जेडे रुख हैं से लगाने चाहिए। क्या बोल दे तुम। हाँ
1: मैडम तो ठीक है, पेड़ लगाते अपने जेड़े आवारा डंगरे छदरे लोग
0: हाँ जी
1: तो ओ ही खाई आ रहे, तो ये लगाने सा ही नहीं
0: दिखा ना।
1: पता
0: तो रुख
1: मतलब।
0: लगाना तो इं लगाई के नवाला नहीं ना छड़ी देना तीसरी थोड़ा दे तार
1: नहीं
0: बाड़ भी
1: जी
0: करना
1: वार,
0: पौंदी।
1: ओ मैडम जी वार भी लगाते, सब कुछ लगाते, पर चलो जैसे डंगरे जे पौंदे अलग वेले तो सब मार दौड़ देता, तो इन्हें किए रोकी सकते।
0: हाँ ये भी है जी पलूसा पलासा निकलिया होंदिया तो खाई जाते ने, है ना।

0: पर कोशिश ये करनी कि जियां अपने ना नेड़े तेड़े लगाने, चलो जंगल नेड़े तेड़े भी अगर अह रुख बूटे उगान ना ता तिस कन्ने भी संजो जेड़ा है सै ऑक्सीजन दिखा। सब ते बड़ा कारण ये है कि ऑक्सीजन दा बड़ा बड़ा साधन है साढ़े पेड़ है ना। सवेरे उठी के तो हाँ बाहर निकली के जा लुहारा हरा दिख दे ता कितना मजा आंदा है ना जी। तो तुहां ना क्या दस्या हा ता कितने पेड़ लगाने हुण तुहां, मतलब रुख बूटे कितने लगांगे हुण प्रोग्राम सुनने ते बाद?
1: चार लगाई बैठे हो ना।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी गल कि तुहां रुख बूटे जेड़े हैं सै लगा दे। कने वैसे भी बोलते 15 जुलाई ते बाद कने 15 अगस्त तक खूब सारे रुख बूटे जेड़े हैं सै लगाने चाहिए, क्योंकि इस वेला जेड़ा बूटा लगदा सै मतलब टिकी जांदा।
1: हां जी, क्योंकि सरकार भी आहे फ्री बूटे दिंदी रहंदी।
0: बिल्कुल, पर एक गल मैं तुहानू दसां, सरकारां दे सहारा नहीं भई रहना चाहिए। अजकल तां बरसाती
1: अजकल ऐसा कि सरकार दिंदी बूटे, लेकिन जेड़े अपने महंगे बूटे ती ना लगाइए तां फल जल्दी दिंदा।
0: हां जी हां जी हां जी हां जी,
1: उन्हें लगाने दा फायदा हुंदा, उन्हें जे थोड़ा अंगणे दे अखे पखे भी लगाई सकते।
0: बिल्कुल, ते बड़ी अच्छी सोच है तुहाडी, कने खूब सारे बूटे आपूं भी लगाने, कने अड़ोसियां पड़ोसियां दियां जेहड़ियां बोबो भैणां ना तिन्हां सारियां ने भी गपशप मारनी, फालतू नहीं ना टाइम ही खराब करना, मतलब इहदियां गप्पां मारनियां। ठीक है जी, तां नां क्या दस्सिया तुहां अपना? राधा देवी जी, तुहां कार्यक्रम च फोन कीता ते सईं तुहाडा मता मता धन्यवाद। इयां जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला कन्नै, कन्नै हुण सुनांदे तुहानू अगला गीत। ठीक है जी, कॉल करने ते धन्यवाद।

हेलो हेलो, वो भाई भैनों सोई मत जा करा फोन मिलाई के। हेलो,

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी ना दसा अपना
1: सोमा देवी
0: कुछ ते गला दे सोमा देवी ग्राएं दा ना भी दसा
1: जिला कांगड़ा कन्ने तहसील फतेहपुर।
0: अच्छा जी ता क्या काम लगाया इस वक्त तू? हाँ
1: खाना खुना बनाने दा मैडम जी।
0: अच्छा जी ता आज का विषय तो हाँ सुनिया। हाँ, बिल्कुल तो दसा भी जितना बड़ा रुख हुंदा ना तिद्दी जड़ जितनी धरती च जांदी ना जी ता धरती इयां दिखिया होना तुहां खड्डा दा पानी लाल हुंदा ता कदी सोचिया तुहां? ए ता बड़ी अच्छी गल है क्योंकि हाँ तुहां ए बड़ी अच्छी गल बोली कि खड्डा दा पानी लाल ना होए तिस तईं हांजो ज्यादा ते ज्यादा रुख बूटे लगाने चाहिए क्योंकि जड़ां जालू पकड़दी ना मिट्टी है तो जड़ां की पकड़ जी होंगी इं भी तुम दिखा होना आंगना चाह बूटे लगाए होंगे तो जितू बूटा हो तिथु आंगन घट पटा गया हूं तो खैर कच्चे रहे ही नहीं है ना जी। तो इस बारी तुम कितने बूटे लगाए? क्या बात है, बड़ी अच्छी गल है। कहने जुलाई महीना शुरू होंदे ही अगर अस लगाई देने ना तो अगस्त तक से बूटा जेड़ा ऐसा टिकी जंदा। तो चलो बड़ी अच्छी सोच है तुहाड़ी। कने तुसा कार्यक्रम च फोन किया, कने तुहां इतनी जागरूक बोबो भैन साढ़े, तो इस तरह सानू बड़ी खुशी हुई। कने फोन करने दी तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। इं जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला कन्नै।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी। ना दसा तौले तौले अपना इसते पहले की फोन कटोईया है।
1: हेलो, नमस्कार
0: हेलो हेलो, ना दसा अपना।
1: जी।
0: नमस्कार जी, ना बोल गए अपना।
1: मेरा नाम तो अक्षरा चौधरी है।
0: अक्षरा चौधरी। ग्राएं दा नाम भी दसा।
1: ग्राएं दा नाम सोड़ा। हाँ
0: सौड़ा जमानाबाद।
1: जी, हाँ
0: अच्छा जी, तो तुहां कार्यक्रम सुना दे।
1: जी, सुना रहे थाने।
0: अच्छा, तो आज कुछ करने तो गल बात करा दे।
1: आज तक तो हाँ बोले रहा जंगलाएं बारे से।
0: हाँ, सह तो साड़ा विषय है ना, पर आज थोड़े कन्ने गल बात करा दी थोड़ी बड़की बोबो।
1: हाँ जी,
0: ठीक है जी, तो जंगलों के बारे च क्या क्या तुहां प्रयास किते, गर्मियों च क्या किता तुहां, कने ऊन बरसात लगी ता रुखा बूटियां दे बारे च क्या बोल गए तुहां।
1: क्या बोलना जी। पेड़ पूड़ लाए न मटे परी, तीन चार बूटे लाए खड़े करा भी सही। खरे अंबा अंबा दे पेड़,
0: अच्छा जी,
1: नाशपातियां दे।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी, उन पता नहीं होंगे कि नहीं होता पौने
0: अच्छा,
1: में।
0: आपू तो तुहां लगाने ना, कन्ने बच्चे
1: हाँ
0: भी मतलब इस बारे च जागरूक करना है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ
0: बच्चे भी दसना, कन्ने अड़ोस पड़ोस जेड़ा होंदा ना, तिन्हें भी गलबात करनी रुख बूटियां दे बारे च, क्योंकि दिखा जितना ज्यादा हरा भरा होगा ना जी, तितनी बीमारियां भी घट होनियां। कने जियां साढ़े पहले एक साड़ी बोबो भैन जुड़ी हुई थी साढ़े कन्ने, तो तिन्हें बड़ी अच्छी गल बोली कि जितने अह रुख बूटे लगाते तो जड़ा च फिरी भूमि कटाव भी नहीं होंगे ना, से भूमि के जेड़े ती सारे पकड़ी लेंदियां जड़ा, है ना जी।
1: हाँ जी, सुने ही मैं।
0: अह कोशिश करनी कि ज्यादा तो ज्यादा जेड़े रुख बूटे हैं से लगाने।
1: हाँ जी,
0: तो तुहां धर्मशाला दे सारे कार्यक्रम सुन दे,
1: हाँ जी, लगभग सुन दे ही ने। चार
0: तो कदे लगते
1: लग दे, पांच
0: छैल लगदे।
1: सुन दे। हाँ जी, ये
0: अच्छा, सब तो छैल क्या लगदा।
1: इधर फोन फोन कर, कदी तो फोन ही नहीं मिलता।
0: हाँ, क्योंकि इस वक्त साड़ियां ने सारियां बोबो भैणा चिमड़ियां होंदियां, फोन करना ना
1: हाँ जी,
0: तो बड़ी अच्छी
1: बड़ी
0: गल है।
1: मुश्किल मिलता।
0: हाँ, तो अज कदिया लगा फोन लगी है तुहाडा, तो
1: आज लगी है तो बड़ी खुशी हो। हाँ
0: क्या बात है। नहीं तो विषय भी पसंद
1: जी,
0: आया कि नहीं।
1: विषय बड़ा अच्छा चुने। आजकल जंगल जरूरी है, क्योंकि लोग जड़न है पेड़ कटते जा दे,
0: हाँ, कने एक गल
1: लगाने
0: मैं
1: ही नहीं
0: तुहानू
1: है
0: दसा,
1: कदम।
0: आने वाले टाइम च
1: हाँ
0: अहां तो जेड़े जंगल लगे हुए तिन्हां दा भरपूर फायदा ले लिया ना, कने आने
1: जी,
0: वाली जेड़ी जनरेशन है ना, तिन्हां
1: हाँ
0: यों
1: जी,
0: जियां मनी लिया हुण जेड़े हाड़े संस्कार हैं तिन्हां तइयां तो हांजो लकड़ी चाहीदी, या हवन करगे तो समधा चाहीदियां, मरन मकान हुआ तो भी लकड़ी चाहीदी, हर कम्मे तइयां लकड़ी चाहीदी है ना। तो
1: हाँ
0: सांजो ना
1: जी,
0: ये
1: सच
0: सोचना चाहिए कि आने वाले बच्चियां वास्ते अहां जंगलां च क्या छड़ी के जा दे,
1: हाँ जी,
0: है ना। अहां क्या
1: हाँ
0: कर दे कि
1: जी,
0: थोड़ा देर नेरा हुंदा कि दे बडैर, तो सह
1: हाँ जी,
0: बडैर
1: हाँ जी,
0: जेड़ी है सनी देनी, क्योंकि बच्चा कने बूटा एक बराबर हुंदे,
1: हाँ जी,
0: बच्चा पालना भी बड़ा औखा है, छोटे ते लेके बड़ा करना है, कने रुख बूटा पालना भी जेड़ा है ना जी से बड़ा औखा है, तो बूटे तुहां इयां पालना जियां अपने बच्चे हैं ना।
1: हाँ जी, हाँ
0: ठीक है जी, तो तुहां कार्यक्रम च फोन कीता, बहुत अच्छा लग्या, कने इयां जुड़े रहे तुहां आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने, फोन करने तइयां तुहाड़ा मता मता धन्यवाद।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम मिंजरा इस वेला तुहां सुना दे आकाशवाणी दी धर्मशाला केंद्र ते, कने अज मैं तुहाडे कने बड़की बोबो वर्षा खटोच, कने साढ़े स्टूडियोज दा जिहड़ा नंबर है, मतलब साड़ियां बोबो भैणां इतनियां जुड़ा दी कि दोबारा मिंजो नंबर दसने दा मौका ही नहीं मिलिया। 01892224391। कने जिहड़ियां बोबो भैणां साड़ियां अंग्रेजी जानदियां ते इन्हां वास्ते भी अहां दसी दईए कि 01892224391 ये साढ़े स्टूडियोज़ का जिहड़ा है सै नंबर है। कने अज जिहड़ा अहां गल्लबात दा विषय लिया सै जंगलां पर, वणां पर अहां गल्लबात करनी, क्योंकि मैं पहले भी अपनियां बोबो भैणां ने दस्सिया कि 1 जुलाई तो लेके 7 जुलाई तक अहां वन महोत्सव मनांदे, मतलब एक किस्म का अहां जंगलों का जन्मदिन ही रखी लिया तो हाँ भी सह मनांदे। कने उइयां तां अहां हर साल ही रुख बूटे लगाई सकते, क्योंकि रुख बूटे लगाने का कोई स्पैशल ये नहीं हुंदा, सर्दियों भी लगते रुख बूटे, जलू स्याले दियां बरखा होंदियां तां रुख बूटियां का जिहड़ा महत्व है, जहां तिन्हां पर भी गल करा दे। कने बूटे लगाना क्यों जरूरी है, अहां तिदी पर भी गल करा दे। कने अहां सारियां गल्लां बातें जिहड़ियां से अपनियां बोबो भैणां ने अज के इस कार्यक्रम च करा दे। तां पहले अहां लैंदे ए ब्रेक, कने फिर चलदे अहां अगले कॉलर वल।

0: क्या बात है,
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम मिंजरां च अज मैं थोड़े कन्ने बड़की बोबो वर्षा कटोश कन्ने आवा गल करदे अगली भैणा ने। हैलो हैलो ता बोबो भैनों, अज का जिहड़ा साडा मिंजरां कार्यक्रम है, हुण टाइम जिहड़ा से बड़ा वारी थोड़ा रही है, जे जुड़ना है ता जुड़ा दियां हैं साड़ियां बोबो भैणा। पर कई वारी क्या हुंदा कि जैलू अहां ये विज्ञापन चला दे हुंदे तां अहां फोन जिहड़ा से तुहाडा नहीं अटेंड कर सकते। हैलो
5: हैलो,
4: हाँ जी, कोई बोबो भैन है घरे च ता गल करवाई दिया।
5: बड़की बोबो भैन ते तू चली आया ना फोन नंबर लाए की।
4: अच्छा जी,
5: पर उठंदा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। मैं दीपिका का हस्बैंड मंगलेश बोल रहा हूँ, दीपिका जी जरा बाहर है, और पालमपुर से बोल रहा हूँ। मेरा आपके माध्यम से एक संदेश देना है कि जैसे जो भी जंगली वृक्ष आजकल हमारे आसपास उग रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी कहीं भी उनको उठा के लगा दे, किसी भी जंगल में लगा दे।
4: बिल्कुल,
5: अगर
4: बिल्कुल।
5: आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी भी के दौरान आपको कहीं दिखता है तो उठा ले, अपनी गाड़ी में रखो, और कहीं जंगल से होके जा रहे हो तो वहाँ दबा के आ जाओ। हम लोग काफी सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, काउंटिंग में नहीं है पर जंगल में लगा के आ जाते हैं, उसके बाद देख तो नहीं पाते, पर इतना जरूर है कि 10 में से 7 तो जीवित रहते होंगे।
4: चक्कर पता क्या है जी, बरसात जियां शुरू हुंदी ना 15 अगस्त तक आहां जेड़ा बूटा लगाई देना है ना, से बूटा जेड़ा है से कदी नहीं मरदा, से चलना ही चलना है ना जी।
5: बिल्कुल,
4: इयां है कि जिहड़ियां साड़ियां बोबो भैणां आउंदियां ना, बोलिया एक जनानी जिहड़ी है से घर बार सब कुछ बड़े अच्छे नाल संभाली सकदी,
5: उन्हें संभालिया कने उन्हां दी प्रेरणा करने असां इह करदे कि गड्डी च पाई के जंगले दौड़ी आंदे।
4: बिल्कुल, कने जनानी जिहड़ी घरे संभालदी ना जी, सह बच्चे भी प्रेरित करी सकदी, सारे सह दसी सकदी इस बारे च, है ना जी। तां चलो, आहां
5: दूजा मैसेज इक होर था।
4: हाँ जी,
5: जियां आहां जो बांदरां दा बड़ा प्रकोप हुंदा, कने जंगली जानवरां दा बड़ा प्रकोप हुंदा, इस वास्ते एक होर पहल कर सकते, तूत होए, काफल होए, जंगली फल जड़े होंगे, कलमां भी अगर इस लगाई जान तो कुछ हद

0: सकते, सिर्फ जंगलों तक ही रुकी सकते, तो हमें फसलों का नुकसान कर रहे हैं, मौका नहीं मिलना।
1: बिल्कुल, एक्चुअली बंदर तां वधे ना जी, अहां जे ओ बनी है ना, अहां जंगलों च ही नहीं खाने तीन छड़े नहीं, साढ़े सियाने जेडे थे से जंगलों च जाई के, जंगलों च जाई के सर रुख बूटे लगाते थे फलदार, अज जंगलों च कैंथा तक जो नहीं छड़ा दे, तो ये समस्या जी आनी आनी, तो सू चाहिए कि अहाँ जो फलदार पौधे हैं ना, सह इन जीव जानवरों वास्ते भी अहाँ जंगलों से लगान। तो हाँ साड़ी बोबो भैन जी जुड़ा दी थी, तीन गलाना दबारी जरूर जुड़ने हो, वैसे अहाँ लेंदे नहीं हैं भाऊँ का फोन कॉल इस कार्यक्रम च, पर चलो पहले बोबो भैन करा दी ही तो अहाँ ले लिया कार्यक्रम च, साड़ी बोबो भैन जुड़ी तोड़ा भी, कने तिना का भी मता मता धन्यवाद, सुनते रहे आकाशवाणी धर्मशाला बड़की बोबो कन्नै।

बोबो भैनों तो घड़िए दियां सूइयां बोला दियां चली पवा हुण करियो ना। तो तुहां सारियां जितनियां बोबो भैणां इस कार्यक्रम च जुड़ियां तुहाडा मता मता धन्यवाद। कने जिहड़ियां साडियां बोबो भैणां जुड़ने ते रहीआं से अगली वारी जरूर अपनी बड़की बोबो वर्षा कटोच कन्नै जुड़न। तो हुण अहां तुहानूं दस दईए कि इस मनोरंजक कने जानकारियां कन्नै भरे कार्यक्रम जो तुहाडे तक पहुँचाने च तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानिया ने, कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह कने हुण अपनी बड़की बोबो वर्षक टोजो आग्या दिया। राम राम जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंचर FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को

0: वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Rasim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said this project will connect the district to industrial development, defence production and the vision of a self-reliant India. The world-renowned Pandwani exponent and Padma Vibhushan awardee Dr. Tejan Bhai, who brought the folk culture of Chhattisgarh to global prominence, was accorded a state funeral at her native village Ganiari, Indore district this evening. On the occasion, public representatives, administrative officials, artists, literateurs and thousands of mourners paid their tearful respects to the legendary icon of folk art. Renowned Pandwani singer passed away early this morning. She was suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. The Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC Plus has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after its virtual meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq,

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कहने बाकी सुनने वाले श्रोतियों जो सैकटरी राम राम कने किसान साथी हो ट्याले पर साथ दया दिन देरोताई तो देरोताई तुंज भी राम राम
1: राम राम सैकटरी जी कने कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे ही किसान कने बागवान साथियों जो मेरी तरफ ते भी राम राम कने भाई सैकटरी जी देखा हूँ साढ़े किसान जड़े हैं ना भाई धाना लाई के लगभग उरे लाई के वेले हुई है ना
0: जी बिल्कुल
1: पर जड़े एक क्षेत्र जितू पानी नहीं पुजदा है ना ते तू साढ़े किसान बरखा जालू भी ओ कर दी तो पट्टियां च जाई के उरा दे डालू जड़े सब फसाई ओ कर दे है ना जी
0: बिल्कुल जी दिखा हां दी जड़ी दाना ही फसल है ना ए चलदी पानी है भरी
1: जी
0: जे बरखा नहीं होंगी तो कुल्ला दा पानी चाहिदा जां कने कुल्ला च नहीं तो फिर बरखा चाहिदी तो हुण किसान साथियों दा जालू मौका बिना ते ना तालू इस मौके दा फायदा चुकना तो है ही है
1: जी बिल्कुल कने देखा भाई पट्टियां कने इंजा भी खिलियां कियां छड़ी देनी है ना जी
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: कने देखा बादे दुकाना जालू जांदे ते देखा चोलां दा भा इतना भरी हुंदा है ना ते भाई पट्टियां अन्न ता आहे उसे जी है ना कियां वसूली लैनी है ना जी
0: जी बिल्कुल
1: कने खाने लायक भी अनाज निकली है तो बड़ी वड्डी गल है ना जी
0: जी बिल्कुल तो ठीक रहा दिखा जी कहते हैं किसान साथी खेतीबाड़ी कने इयां जुड़ी के रहंदे तां ही आहंदी जिहड़ी थालियां च जिहा रोटी पुजदी है
1: जी
0: कने
1: बिल्कुल
0: अगर जे किसान साथी खेती करना छड़ी जांदा फिर रोटी आहदी थाली तक पुजना भी जिहड़ी सै मुश्किल हो जानी
1: जी कने देखा भाई खेती सोगी सोगी साढ़े ऐसे भी किसान हैं सै धान कणक कने और मुख्य फसलों के अलावा उस दियां पौधे की भी खेती करा करदे न अगर कोई और साढ़ा नौजवान साथी या कोई और किसान साढ़ा उस दियां पौधे की खेती करना चाहते तो अज इस बारे च थोड़ी जी चर्चा जी असें करनी है ना
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी तुम ठीक लगा देखा जी औषधीय पौधे की खेती जी किसानों वास्ते घट लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय बनी सकती है कने इन्ह की जी मांग है सै भी दिन प्रतिदिन जी सै बधा करती है तो यह खेती का महत्व भी जरा दिन प्रतिदिन जरा बधा करता है
1: जी कने देखा भाई अगर उस दिए पौधे की खेती दे बारे च अगर अस सोचते हैं तो गल करते कि भी इस विच मुख्य पौधे जड़े हैं मतलब उस दी असें अहां क्या क्या जड़े असें लगाई सकते हैं देखा
0: जी
1: भाई सारे तो पहले अहां गल करते अश्वगंधा दी कने भी मैं इस अश्वगंधा दे बारे च गल करने से पहले मैं सैकटरी जी मैं गलां भाई अजकल तो नर्सरी च जा ना
0: बिल्कुल
1: कने दिखो भाई तरह तरह के पौधे जड़े हाँ जड़े पहले अह ना भी नहीं सुनते न जी अश्वगंधा के पौधे भी अजकल नर्सरी से मिलना ये जा तो हाँ त्याले दे बखे जा वाला बूंदी है जा तो हाँ चैतड़ुए बगली जा बखे बखे त्याले बखे जी नर्सरी है ना सारे चो अश्वगंधा का पौधा जो मिली आना
0: जी
1: कने
0: बिल्कुल
1: पहले अह सुनने नहीं मिलता है ना जी कने इस दे अलावा दिखा अश्वगंधा जड़ा पौधा है सै शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु जड़ी होंदी है दोमट मिट्टी जड़ी होंदी तित्थू जड़ा सै पैदा हो जांदा कने इस दी जड़ी फसल है सै 5 ते 6 महीने च जड़ी है सै तैयार हो जांदी
0: जी बिल्कुल
1: कने इस दा उपयोग जड़ा है सै तनाव करन काम करने वास्ते कने जड़ी इम्यूनिटी है साढ़े शरीर च तुसों बढ़ाने वास्ते इस दा इस्तेमाल जड़ा सै हुंदा है ना जी
0: बिल्कुल जी कहिंदे दिखा इहा दी इस दी जड़ी जड़ां ना सै भी दवाई बनाने वास्ते जड़ी इस्तेमाल कीतियां जांदियां ने
1: जी कने देखा इस दे गां आहां गल कर एलोवीरा दी है ना जी जिस आहां कांगड़ी च कुआरे भी बोलते हैं
0: जी,
1: ना जी
0: बिल्कुल
1: कने एलोवीरा मतलब देखा कम पानिये च कने रेतीली जड़ी जमीन होंदी ते थोई पौंदी जी आहां मैं भई अपने जमाने दी गल करां तां देखा भई घरे बखे लाई होंदी ही कुआरे कने देखा भई जेड़ी चुल्ली दी धूड़ निकलनी ना सै
0: बिल्कुल जी
1: सारे ते ज्यादा धुल्ली धूड़ देनी कने ते ते कुआरे ते ढक्के सट्टी होनी ते उसने बड़ी बारी फैलना तिन्ने
0: जी
1: बढ़िया फैलना कने दिखा भाई कुआरे की गल कर एलोवीरा की गल कर अजकल तो हाँ दिखा करते अगर तुह सोशल मीडिया चलाते हैं तो दिखा भाई मूह में च लगा दे बाला च लगा दे कई दवाइया ने तिना च पा दे ते सिरप बनाई के पिया कर दे
0: जी,
1: ना
0: बिल्कुल
1: जी सेहत वास्ते इतनी अच्छी है
0: एलोवेरा दिखा बड़ी अच्छी एक चीज़ है जिसे अगर हाँ दे किसान साथी क्या कि आम इंसान भी अच्छे तरीके ने इस्तेमाल करे ना तो सेहत वास्ते इस दे बड़े ज़्यादा फायदे होंगे कने फसल दिखा 8 से 10 महीने जी की तैयार हो जाती है कने जे तुम गल की जाए तो कंपनिया ने तो जी क्रीमा क्रूमा बनाने वाली कंपनिया ने और शैंपू तो शुंपू बनाने कंपनी तिना कने भी तुम कॉन्टैक्ट कर सकते कने अपनी फसल आराम ने बेची सकते
1: जी कने दिखा भई कई साढ़े किसान हैं सै तुलसी की खेती भी करा करते हैं भई अहां गल कर कांगड़े दी ना तो दिखा नूरपुरा साइड चली आ ना तुसा तो इस साइड जवाली नूरपुर साइड भी साढ़ी किसान भैन कई हैं जो तुलसी की खेती करा कर दी तुलसी
0: दे
1: दिखा भई तुहां जो स्वयं सहायता समूह चलाए ना जनानियां ते ना दिखा तुलसी का साबण बना करते अर्क बना करते हैं
0: बिल्कुल
1: कने अजकल तो हर कोई अपने मतलब शरीर की सुंदरता अपने चेहरे की सुंदरता वास्ते जो सजग है हर कोई चाहता है सुंदर सुंदर मतलब सुजना है ना जी
0: जी बिल्कुल
1: तो तुलसी की खेती जी असें भी साढ़े किसान करी सकते हैं कने तिस कने तिना जो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो मिलना है क्योंकि हर कोई अजकल सोशल मीडिया या इक दुए दे जियां कोई सभा होंदी ते उत्थूं जाए के इतना मतलब जानकारी सुना करदा अपने स्वास्थ्य दे प्रति जेहड़ा से जागरूक होआ करदा वे
0: बिल्कुल
1: कि
0: जी
1: आयुर्वेदिक चीजां जेहड़ियां से बड़ियां अच्छियां
0: जी
1: ने ना
0: बिल्कुल
1: जी।
0: जी थोड़ा ठीक इलाज दिखा के तुलसी की जी तुम्हें गुणवत्ता गिनाई है ना। इस ते अलावा तुलसी जी इस अहाँ की औषधि दवाई के कमें भी इस्तेमाल होआ करती है। कुछ खंघ हो जाए तो तुलसी का काढ़ा पी लिया, या और कोई बीमारी हो तो झटक तुलसी की काढ़ा पिया दिया। तो इस चीज़ भी तुलसी का काफ़ी महत्व है। दवाई तो खैर है नहीं है पर तुलसी उइयां अलग हर घर घर जरा औषधि महत्व इसका अज भी बरकरार है
1: जी। कने गिलोएं दी गल करी है ना जी, गिलोएं तो कई बारी ना दिखा दुकाना ते खरीदना पौंदी जित्थू कुछ इलाके हैं जित्थू गिलोएं नहीं कुथी मिले खाने दसी हुए तो नहीं मिले तो दुकाना ते खरीदी के लेना पौंदी है, कुछ की रिश्तेदार ते मंगाना पौंदी है ना।
0: जी
1: तो गिलोएं दी खेती भी बहुत ही अच्छी है कि नहीं दिखा, गिलोएं जड़ी ऐसे बेला च लगती कोई भी रुख है तिसते कन्ने तो हलाई दे रुखे चढ़ी आती बड़े आरामे ने है ना जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: कने कोई खाद पानी नहीं कोई सेवा तुहां नहीं करनी है ना जी। कने दिखा भाई कितनी मतलब अच्छी है दिखा, ये डेंगू बुखार कने दिखा इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते बहुत ही अच्छी होंगी गलोए है ना
0: बिल्कुल
1: जी।
0: ठीक लाया दिखा जी। कहाँ के कुछ किसान साथी होंगे डरते भी हैं कि हाँ अगर औषधि पौधे ला लिया तो यह बिकने कुछ। तो सब तो पहली गल दस दी कि औषधि पौधों की बिक्री तुम्हारी फसल लगने से पहले भी आँगी। अगर तुम अनुबंध की खेती करा कर दें तो यह पहले ही बिकी ही होंगी तुम्हारी फसल। फसल लगाने से पहले क्योंकि तुम चलो किसी कंपनी कहने अपने अनुबंध करना तो है कंपनी बोलती कि तुम जी फसल लगानी है अह पहले ही खरीदी ली तो इसके कारण जरा अहाँ की फसल का नुकसान होने का भी जरा है बड़ा घट चांस होंगे कि अभी फसल नुकसान भी होए
1: जी। कने दिखा भी अजकल कई जगह साढ़े किसान जड़े से आवारा पशुओं ने भी बहुत ही परेशान है। कई किसान तो अपने बड़े बड़े टुकड़े जड़े जमीना दे ने से खिले पाई तो नहीं कि
0: जी
1: भाई
0: बिल्कुल
1: आवारा पशुओं ने या बंदर ने तिना दी उजाड़ दे कारण आहां भाई नहीं बांधे अपनी खेती है ना जी। तो ये अगर औषधीय पौधे की खेती असं करते तो असं आवारा पशुओं से भी कने बंदर वगैरह की अगर उजाड़ है तो इसते भी
0: छुटकारा मिली आना जी।
1: छुटकारा
0: जी
1: मिली जाने
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये आवारा पशु कने ये जड़े इन्हें औषधीय पौधे जो नहीं खाते हैं ना
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल
1: ता एक बहुत ही मतलब अच्छी एक आयुर्वेदिक खेती दी तरफ बढ़ने दी एक पहल अगर हाँ करने ता बड़ा अच्छी चीज़ होनी है ना
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल
1: कने दिखो भी हूँ साढ़े टियाले पर अहाँ शामिल करना है एक लोकगीत, ता और सुन देने लोकगीत।

0: फिर चलना जानकारी की तरफ। तो यह जी जानकारी है जिला मंडी ते एक उन्नत किसान हैं साढ़े राहुल होर, तिना ने जी गलबात की है कि से खेतीबाड़ी करा करते हैं, कने कि मुनाफा कमा करते हैं और सुनते ने भेंट वार्ता।
1: किसान साथियों जिवें कि तुहां जानदे ही हन, अहां टियाले दे माध्यम ने तुहानू तक नवीं नवीं जानकारियां लेके आउणियां, चाहे कदी डॉक्टरां दे माध्यम ते अहां तुहानू तक जानकारियां लेके आउण या फिर कई किसानां दे माध्यम ने जानकारियां लेके आउण। कने जिवें कि तुहां जानदे ही हन कि किसान हांजुल अलग अलग तरह दे हुंदे, अलग अलग कम करने वाले किसान हुंदे, कने अपने तजुर्बे जिहड़ा सह सांझो दसदे सांझो ने सह सांझा करदे, तां सही तजुर्बे जिहड़ा सह अहां तुहानू तक पहुँचांदे हन। अज भी इस कड़िए विच सांझो कन्ने इक किसान भाई जुड़े हन, तां उह जाणदे इन्हां दा नां, कने कुतों दे रहने वाले हन। हाँ जी,
2: सबसे पहले तो भाई तुहां जो नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं गांव सियोली तहसील बल और डिस्ट्रिक्ट मंडी ते रहने वाला।
1: राहुल जी स्वागत है तुहाड़ा। तो सारे तो पहले ये दसा कि भाई तुहां जो जमीन किन्नी की है?
2: भाई यहाँ कोल मेरे कोल जमीन 8 एकड़ बीघे हैगी।
1: अच्छा, तो इस वक्त जो तुहांजल 16 एकड़ जो जमीन है, तो तेहा विच तुसा इस वक्त क्या क्या लगाया?
2: इस वेले यहाँ ते टमाटर लगते हैं ते धान लुंदे है।
1: अच्छा
2: ठीक है, हुण अगे छलिया दी फसल होनी है।
1: अच्छा
2: ठीक है, अलग अलग फसल होंदी है।
1: अच्छा,
2: थोड़े थोड़े टुकड़े अंदर फसल लगांदे है।
1: ता जी के अहां हुण ताजी गल करिए, ता पिछे दिखा जी कणका दा जेड़ा सा मौसम था, ता कणक तुसा किन्नी के लगाई हुई?
2: कणक हां ज्यादा नहीं, 2-3 बीघे च कणक लगाई थी।
1: अच्छा,
2: उस ते उपरांत हां जेड़ा टमाटर दी फसल होंदी है हां दी
1: जी जी
2: छे लगांदी है, बाकी जितना जमीन बची होंदी है उस च छे लगांदे है। एक्चुअली जेड़ा टमाटर होंदा इसकी खेतीबाड़ी होंदी स्टार्ट हो जांदी हां दी फरवरी महीने ते।
1: अच्छा,
2: फरवरी महीने हां इस च पनीरी देंदे है।
1: अच्छा,
2: फिर पनीरी तैयार होने जो 1.5 महीना लगता है
1: जी,
2: पनीरी तैयार होंदी है। फिर उसके बाद जियां डंडे वगैरह गड्ढदे है,
1: जी जी
2: खेतियां लगांदे है, से प्रोसीजर चली पौंदा है आंदा।
1: नहीं तो जी गल की तुहां के फरवरी विच टमाटर का काम जेड़ा सा शुरू हो जाता।
2: हाँ जी,
1: तो देखा जी जालू बीज ब्योज की गल आती, तो सा बीज जेड़ा सा बीज का प्रबंधन क्या क्या रहा, मतलब बीज लगाते तो हाँ या फिर पनीरी तैयार करते, या अगर पनीरी लगाते हैं तो अपनी तैयार करते या कुछ बहरे ते लेंदे?
2: नहीं जियां पनीरी आहां पनीर लगांदे है
1: जी,
2: पनीरी बाजार ते कोई सीड्स दुकान होनी या कुछ
1: जी,
2: भी के जो भी दुकान होनी उस ते बीज लियाने है
1: जी
2: फिर बीज लगाई के उतो पनीरी खुद देनी है।
1: अच्छा,
2: फिर पनीरी तैयार होने जो ज्यादा नहीं 1.5 महीना 1.5-2 महीना टाइम लगता है।
1: जी
2: पनीरी पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसके बाद बूटिया का लगाने का काम स्टार्ट हो जाता है।
1: तो इस वक्त बूटियां की क्या स्थिति है, बूटियां की कितने बड़े हो चुके हो इस वक्त?
2: बूटे इस टाइम अहां दे फसल तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट।
1: अच्छा,
2: जून महीने च टमाटर तोड़ना स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा,
2: पर कुछ मौसम करके इस बार फसल थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें तो थोड़ी बीमारी लग पई हो, बूटे जेड़े से सुखी पे हो।
1: अच्छा,
2: मौसम थोड़ा मौसम ने इस बार साथ नहीं दिया किसानों का।
1: अच्छा,
2: फसल जो है वो इस बार उतनी नहीं हो उतनी खास नहीं है।
1: अच्छा, तो गलाने का मतलब जी है तो हाँ इशारा करा दे के जेड़ा बेमौसमी बारिश जेड़ा हुआ दी ये नुकसान कराई, तो देखा जी कितना के तुहानू लगा था कि नुकसान जेड़ा ऐसा इस वक्त है टमाटर ही है फसला च?
2: टमाटर दी फसल दा इस बार नुकसान ज्यादा नहीं बोलता मैं, तो जितना लास्ट ईयर च हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा ही है नुकसान।
1: अच्छा जी, तुहां गल कीती पिछले साले दी,
2: तो
1: पिछले की साल तुहां कितने के पैसे दा टमाटर जेड़ा सा बेची लिया हा?
2: पिछले साल हां ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख दा 1.5-2 लाख दा टमाटर बेच लिया था।
1: अच्छा जी,
2: हां जी,
1: तो इस वारी जी तुहां बोलिया कि नुकसान होने दी संभावना है, तो इस वारी क्या लगता तुहां जो कितना के टमाटर तुहां बेची लेंगे?
2: इस बारे टमाटर दी तो हुण जिहड़ा टमाटर दा मार्केट दा रेट होना भाव होना
1: जी जी जी
2: तो से अगर ठीक रहेगा
1: जी
2: तो टमाटर हां हो सकदा कि लास्ट ईयर तक पहुंच जाए।
1: अच्छा,
2: पर संभावना नहीं लगे करदी इस बारे।
1: अच्छा,
2: जियां टमाटर चलिया है फसल चली है तो उस हिसाब नहीं संभावना नहीं है। हां अपना अनुमान लगाया है कि लख ते ऊपर तो हां करना ही है अगर।
1: अच्छा,
2: रेट हां जो ठीक मिल जाए
1: जी,
2: मंडी ते रेट ठीक मिल जाए तो इतना हो सकता है।
1: अच्छा, तुहाड़ा गलाने का मतलब यह है कि

किसान साथियों इस लोकगीत कन्ने उनाहां दे जाने दा वक्त होई है, उनाहां दुनिया दिया इजाजत, पर जाने ते पहले दस्सदीए कि कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे जितेंद्र पाल सिंह। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आपने सुना देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला के
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा वीपीजी रामजी के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए बौद्ध मूल्यों और आधुनिक विज्ञान को महत्व देने पर दिया बल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का किया आह्वान और राज्य में नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाएगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस पहली किश्त का उद्देश्य राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाना है ताकि भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन करीब 10% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य से सरकार ने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति और नवाचार कोष को मंजूरी दी है। इससे राज्य में नवाचार आधारित इकोसिस्टम तैयार होगा और हिमाचल प्रदेश देश के नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित होगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने वर्ष 2026 से वर्ष 2028 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए बौद्ध मूल्यों और आधुनिक विज्ञान पर बल दिया है। वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ के ताशीजोंग में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पूरा विश्व आज हिंसा, युद्ध, पर्यावरण संकट और नैतिक मूल्यों में कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान पर आधारित शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। उन्होंने देश के युवाओं से नालंदा परंपरा के मूल्यों का अनुसरण करने और प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सकों को वैज्ञानिक और व्यवहारिक रोड मैप तैयार करने को कहा है। शिमला के समीप कुफरी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभिन्न मौसमों में पशुओं में होने वाली बीमारियों, आवश्यक दवाओं और टीकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को पशुपालन से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी के अग्रणी संगठनों व विभागों से अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया है। शिमला में आज कांग्रेस से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठनों व विभागों के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। रजनी पाटिल ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने और आपसी तालमेल से कार्य करने पर भी बल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार है और दिशा में रणनीति पर भी चर्चा की गई है।
2: कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर पूरी तरह से 2027 के चुनाव के लिए गियर अप हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी मिशन रिपीट करने वाली है, उसको लेकर हमारी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने एक मैसेज दिया है कि किस तरह से हमें जाकर फील्ड में काम करना है।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसके तहत बड़े कलवर्टों का निर्माण किया जाएगा ताकि बरसात के दौरान सड़कों को नुकसान ना हो। शिमला जिले के कुमार सेन में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा, सुशासन और समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में कुमार सेन क्षेत्र के लिए 8 संपर्क सड़कें स्वीकृत की गई हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख करते हुए इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान भी बताया।
3: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक 10,000 से अधिक शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इनमें से करीब 8,000 नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। मंडी जिले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दयोरी में आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और विद्यार्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण व आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सोलन विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्रामीणों की मांग के अनुसार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। कंडाघाट उपमंडल की ममलीक पंचायत के दोची गांव में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। शांडिल ने आश्वासन दिया कि नई बनी वशील पंचायत में जल्द ही पंचायत घर का निर्माण किया जाएगा। स्पीति घाटी में संस्कृति और मातृभाषा संरक्षण पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भाषा व संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया गया। देश भर से करीब 400 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
4: लाहौल स्पीति के रंगरेक और काजा में आयोजित राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक सम्मेलन से भाषा और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया गया। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन स्पीति और मुनसिलिंग के संयुक्त तत्वाधान में 3 से 6 जुलाई तक चल रहे इस सम्मेलन में देश भर के विद्वान, लामा, शोधकर्ता और करीब 400 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में बौद्ध दर्शन, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। आयोजन समिति ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का संकल्प भी दोहराया गया। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति समय सुरेंद्र कुमार।
0: माकपा ने सरकारी विभागों में की जा रही भर्ती की नीतियों व नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि सरकार जॉब ट्रेनी, मल्टी टास्क वर्कर, पार्ट टाइम, अंशकालिक, ठेका और आउटसोर्स आधार पर काफी कम वेतन या मानदेय पर भर्ती कर रही है, जिसमें भविष्य में रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन नीतियों से युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी बेरोजगारी के कारण गलत कदम उठाने को मजबूर है। सिरमौर जिला भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान आज पौंटा साहब में संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को संगठन की सबसे बड़ी शक्ति बताया और उम्मीद जताई कि ये कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भाजपा की विचारधारा को पहुंचाएंगे। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा VBG रामजी के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए बौद्ध मूल्यों और आधुनिक विज्ञान को महत्व देने पर दिया बल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का किया आह्वान और राज्य में नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाएगी सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20। नमस्कार।
5: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़ें, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़ें।
6: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
5: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
6: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
5: जानकारी लें, अधिकार जानें।
6: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
8: हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर हैं भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
9: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है और किसके बीच में, पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में। और ऐसे में इंग्लैंड, जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है। तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं। चर्चा जारी रहेगी पिच नंबर 10 जिस पे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफ़ी सूखी हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूँ प्रकाश वाकणकर।
10: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर लिसनिंग। इट्स अ बिग डे एट लॉर्ड्स वेयर द T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd, and those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions, as Vineet has described. It's a fresh pitch, and England will have to get up above par score, Vineet, because this Australian juggernaut is not going to be stopped.
11: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के पहली प्रस्तुति बबू मान की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत।

0: कार्यक्रम सबरस की पहली प्रस्तुति आपने सुनी बबू मानवा साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हेमा सरदेसाई, भूपी चावला के युगल स्वरों में ये गीत।

अभी आपने सुना हेमा सरदेसाई व साथियों की आवाजों में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में गाई इस गज़ल को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना अलका याग्निक की लारुण व साथियों की आवाजों में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लारुण की आवाज में।
1: इश्क जैसा न कोई पूजा है, इश्क तो एक हसीन पूजा है। इश्क हर्फे दुई मिटाता है, इश्क अल्लाह से मिलाता है।
2: ये इश्क है।

इला अरुण व साथियों की आवाजों में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी शब्बीर कुमार व साथियों की आवाज़ों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी व साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना देशगान कार्यक्रम का ये देशभक्ति गीत, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत और ये कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: बल्ली कित्थे
0: वाहे गुरु।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आप पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक

0: स्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
6: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक चेतन आनंद द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। श्रोता, 1950 के दशक के शुरू में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस मैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधियां जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी अलग कंपनी शुरू की। इस मैनर ने हिंदी सिनेमा को हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम दिया। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया था।

लगता है कि यहाँ

0: अभी आपने सुने निर्माता निर्देशक चेतन आनंद द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्म गीत। हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस बात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है।

0: केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपने श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियन, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू दिस सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉय से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है, कुछ एम्प्लॉय मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉय, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडियाज आ रहा है, जितना भी आइडियाज है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ एनएमएल आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में एनएमएल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर, इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
3: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फीड उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
3: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे, प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
3: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स नॉट ए 1 day कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, ये डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशक दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज एसजे कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
4: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि एक्सएलआरए की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए एक्सएलआरआई भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
5: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग काम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
5: बहुत कोशिश की है, बहुत संघर्ष की ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
5: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
6: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की

0: औरतें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
1: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं, तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
2: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
2: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
1: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व्ड है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
4: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है, आशीष तानीपुरति, जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
4: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4,000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
5: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हरे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मांदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
6: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकर लाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय

प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।